0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतार कर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी

0: के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं हैं। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महर्षि वाल्मीकि का ये विचार है कि हताश न होना सफलता का मूल मंत्र है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों के लिए प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाने में मदद करता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है झरोखा के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस भाग 185। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला, महिला रचनाकारों की बंदिशें, कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, गायन सहभाग किया है अनुजा जोकरकर ने। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा 6:45 पर। सुबह 7 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 से चित्रलोक। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकेंगे 9:30 पर। सुबह 10 का समय है पिटारा उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम का, सुनिए निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। सुबह 11 कार्यक्रम रंग तरंग और 12:05 पर कार्यक्रम होगा यादों की महफिल। सुरीला सफर, ये कार्यक्रम दिन में 1 और दिन में 2 कार्यक्रम त्रिवेणी। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दिन में 3 का समय है सखी सहेली कार्यक्रम का और 4 पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम सेहतनामा, थैलेसेमिया की बीमारी और उपचार, इस विषय पर डॉक्टर आशय प्रमोद से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत आप सुन पाएंगे। 5 कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम संध्या रंजन। शाम 7 कार्यक्रम होगा जयमाला और 7:45 पर कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाया जाएगा। रात 8 कार्यक्रम होगा हवा महल, नाटिका आंगन में स्वर्ग, लेखन और निर्देशन किया है दुर्गा मेहरोत्रा ने। रात 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। रात 9 का समय है कार्यक्रम आपके लिए, रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार और रात 10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत। रात 10:30 पर कार्यक्रम होगा ढलती जाए रात और रात 11 रंग तरंग। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस भाग 185।

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग 185।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। श्रोताओ आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 9वीं एवं अंतिम कड़ी
1: महिला रचनाकारों की बंदिशें। आज संगीत सरिता की इस श्रृंखला के अंतिम सोपान पर हम पहुंच गए हैं। आज की ये जो आखिरी कड़ी है वो केंद्रित है विदुषी कल्पना जोकरकर पर। कल्पना जी आप बताइए अपनी तालीम के बारे में। सबसे पहले
2: संगीत का वातावरण तो घर में था ही। मेरे पिताजी पंडित कृष्णराव मजुमदार जी जो बहुत उत्तम गायक थे और उस्ताद रजब अली खां साहब के पट्ट शिष्य थे, तो घर में हमेशा ही महफिलों का आमने सामने बैठकर हमको कई कलाकारों को सुनने का मौका मिला। कई कलाकारों का आना जाना होता था, बातचीत होती थी जी। संगीत विषय पर और अलग अलग पहलुओं से संगीत को जानने का मौका मिला
1: जी।
2: और तालीम तो मेरी बचपन से शुरू हो गई थी। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाना शुरू किया था और बहुत नियमबद्ध तरीके से तालीम देते थे। बेसिकली वो व्यवसाय से इंजीनियर थे, बहुत कठिनाइयों से संगीत की तालीम प्राप्त की और उसको आखिर तक निभाया
1: जी।
2: बहुत अलग अलग प्रकार के कलाकारों के सान्निध्य में वो आए। हमारे घर पे भी कई कलाकारों का आना जाना, महफिलें होती थी, बैठकें होती थी, तो संगीत के क्षेत्र में उनका नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है
1: जी।
2: करीब 12-15 साल मैंने उनसे तालीम ली और उनके गुजर जाने के बाद मैंने डॉक्टर सुशीला पोहनकर जी से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया
1: जी।
2: उसमें उन्होंने मुझे ठुमरी के विषय में भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अलग अलग ठुमरियाँ सिखाई। ठुमरी की एक विशिष्ट शैली उन्होंने बताई, कई बंदिशों को सिखाया। बंदिशों में सुरों का लगाव और भाव भावाभिव्यक्ति कैसे की जाए
1: जी, जी।
2: किस शब्द को किस तरह पेश किया जाए, इसके बारे में बहुत अच्छा मुझे उन्होंने मार्गदर्शन दिया
1: जी।
2: और मुझे हालांकि पंडित वसंत राजूरकर जी से भी मार्गदर्शन मिला। हैदराबाद में थी मैं, मेरा विवाह होने के बाद
1: जी।
2: तो वहाँ उनके संपर्क में आने के बाद उनसे भी मैंने ग्वालियर घराने की कई बंदिशें, अष्टपदियाँ, तराने अलग अलग प्रकार के सीखे और टप्पा गायन शैली भी उन्होंने मुझे सिखाई। कई टप्पे ग्वालियर घराने के सिखाए, तो इस तरह अलग अलग पहलुओं से मैंने संगीत को देखा जाना
1: जी।
2: और फिर कुछ समय बाद, अभी कुछ 10-12 साल पहले से बंदिशें बनाने का एक सिलसिला जारी हुआ, शुरू हुआ।
1: तो कितनी बंदिशें आपने रची हैं?
2: कई बंदिशें मैंने तैयार की है, उसमें कि आज आपके सामने भी हम प्रस्तुत करेंगे
1: जी। जी
2: कुछ ठुमरियाँ तैयार की है, कुछ दादरे हैं, कुछ होरी है
1: जी।
2: ये जो उपशास्त्रीय संगीत के जो विविध प्रकार हैं इनमें भी मुझे बहुत रुचि है क्योंकि मैं सुगम संगीत बचपन से गाती आ रही हूँ
1: जी। जी
2: उपशास्त्रीय संगीत जो है वो शास्त्रीय और सुगम संगीत दोनों का मिश्रण है कह सकते हैं
1: जी।
2: या उसकी छाप उस गायकी पर है, तो मुझे उपशास्त्रीय संगीत भी बहुत पसंद है
1: जी।
2: तो उस

0: में भी कई बंदिशें मैंने रची हैं।
1: जी, तो अभी क्या प्रस्तुत करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए, कौन सी बंदिश प्रस्तुत करेंगे?
0: अभी राग हिंडोल में दो रचनाएं मैंने बनाई हुई हैं,
1: जी
0: क्योंकि सुबह का समय है और उसके बारे में थोड़ा सा मैं चलन बता के, और अनुजा वो दोनों बंदिशों का गायन करेगी।
1: जी
0: तो राग हिंडोल ये कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है,
1: जी
0: इसमें मध्यम तीव्र है और ऋषभ पंचम वर्जित है,
1: जी जी
0: और निषाद कर्ण स्वर में जो प्रयोग किया जाता है, इसका वादी धैवत और संवादी गंधार है। और इस राग की विशेषता है कि मींड और गमक के प्रयोग से इस राग की जो अलग अलग स्वरों की जो स्वरावलियाँ हैं
1: जी
0: वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हैं। तो हिंडोल जैसे कि इसका नाम है, तो उसी पर आधारित मैंने ये बंदिश में उसी का प्रयोग किया है, उन्हीं
1: जी
0: शब्दों का प्रयोग किया है।
1: जी
0: तो झूलत है कृष्ण मुरारी,
1: वाह,
0: राधे संग सखियां झुलावे।
1: क्या बात है।
0: तो रूपक ताल में ये मध्यलय की बंदिश है, अनुजा आपके सामने प्रस्तुत करेगी, और उसके पश्चात एक तराना।
1: जी

0: वाह अनुजा जी, आपने तो मन मोहित कर लिया हम सबका। ये जो बंदिश थी जिसे कल्पना जी ने रची, जिसमें कृष्ण का सखा भाव था, झूले की पींग मार रहे हैं कृष्ण जी और राधा झूल रही हैं, तो वो पूरा चित्रण इस बंदिश में मिल गया हमें, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम के समापन का समय आ गया है, चलने से पहले अपने साजिंदों का भी हम परिचय करा दें। तबले पर संगत की यति भागवत ने और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनौने जी ने। यति भागवत जी और ज्ञानेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अनुजा जी, आपने इस पूरे प्रोग्राम में जैसे चार चांद लगा दिया, तो आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: कल्पना जी, आपने इस श्रृंखला को प्रस्तुत किया और हमें जो आनंद मिला उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सभी श्रोताओं की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। नमस्कार।
3: नमस्कार। महिला रचनाकारों की बंदिशें। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 9वीं एवं अंतिम कड़ी। इस श्रृंखला के लिए आमंत्रित कलाकार थीं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत की ममता सिंह ने, गायन सहभाग रहा अनुजा जोकरकर का, तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर थे ज्ञानेश्वर सोनवणे। श्रोताओं, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? विविध भारती के फेसबुक पेज के माध्यम से अपने उद्गार हम तक अवश्य पहुँचाएं। चलते चलते आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कि

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला गीत मिस्टर एंड मिसेस 55। इस फिल्म का गाना गीता दत्त और साथियों की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत ओपी नैयर का।

अगला जो गीत है ये आशा भोसले और तलत महमूद की आवाज़ों में मस्त कलंदर फिल्म का गाना, असद भोपाली के बोल, संगीत है हंसराज बहल का।

0: वज्रदंती। विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: उनाळा मां जारे 40 नी उपर जाय पारो तो समझी लो के स्वास्थ्य माटे सावचेत थवानो छे वारो। जो तापमान मां सामान्य करता 5-7 डिग्री नो वधारो 2 के तेथी वधु दिवस सुधी नोंधाय तो आ स्थिति ने कहेवाय छे हीट वेव, एटले के लू। आपणा माननीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदी ना मार्गदर्शन अने मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल ना नेतृत्व मां तंत्र द्वारा तो हीट एक्शन प्लान एक्शन मां मुकवामां आव्यो छे। परंतु आ माटे नागरिकोए पोते पण सावचेतीना पगला लेवा जरूरी छे, जेवा के उनाळामां चा, कॉफी के कार्बोनेटेड पीणाने बदले लींबुनुं शरबत, छाश वगैरेनुं सेवन करो। घरथी बहार निकळती वखते माथुं ढांकवा टोपी, गॉगल्स के छत्रीनो उपयोग करो। मसालेदार खोराकने बदले पाणीनुं सारुं प्रमाण धरावता मौसमी फळो जेवा के तरबूज, टेटी वगैरे बधुं लो। आछा रंगना सुतराउ कपड़ा पहेरो। पण तेम छताय जो लू लागे तो तात्कालिक ORS अथवा मीठा अने साकरना पाणीनुं सेवन करो। छाईडा वाली जग्या अने बने तो ठंडक वाली जग्याए रहो। इमरजेंसी मां डॉक्टरनो तात्कालिक संपर्क करो। प्रकृति तो पोतानुं स्वरूप बतावशे ज, पण जो साथे मळीने रहीशुं सचेत तो लूना प्रकोप सामे थईशुं सुरक्षित।
2: वीडियो लाइक करवाना पैसा मळशे।
3: So easy!
4: फसाणो।
5: अजाणे लिंक्स पर क्लिक ना करो। RBI कहे छे,
6: जानकार बनो, सतर्क रहो।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी।

0: प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। जनक जनक पायल बाजे इस फिल्म का गाना, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार वसंत देसाई।

हाउस नंबर 44। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है एस डी बर्मन का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: देवाधिदेव महादेव नु प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ भारतनी अजय सभ्यता नु प्रतीक। 1000 वर्षो ना विनाशकारी प्रहारो छता सोमनाथ आजे आपना आत्मसन्मान अने साहसनी जीवंत प्रेरणा बनीने अड़ीखम उभू छे। 75 वर्ष पहला लोखंडी पुरुष सरदार पटेले संकल्प लीधो सोमनाथ ना नवनिर्माण नो। अने आजे माननीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी ना नेतृत्व मा आ पावन भूमि भारतना सांस्कृतिक पुनरुत्थान नो शंखनाद करी रही छे। आवो साक्षी बनिए आ स्वर्णिम अवसर ना, उजवीए सोमनाथ नी विरासत ना 75 वर्ष। 8-11 मई 2026 श्री सोमनाथ मंदिर परिसर प्रभास पाटण।
2: ओछा समय मा वधु नफो, बस एक क्लिक पर कमाल छे।
3: पसाणो
4: अजाने लिंक्स पर क्लिक ना करो, आरबीआई कहे छे
3: जानकार बनो सतर्क रहो।
0: सुनिए आरडी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम घर।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: यह है त्रिशूल फिल्म का गाना लता मंगेशकर और यशुदास की आवाजों में सहेल लुधियानवी के बोल संगीत खयाम का।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है। हम हैं राही प्यार के। अगला गाना सुनते हैं, बनफूल फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
2: ओ सपना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में NDA के लगातार तीसरे कार्यकाल का

0: रास्ता साफ हो गया है।
1: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला स्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
5: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
6: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटा हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
1: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलियश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगवा मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112301 0112371717 और 0112371 7106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदे, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवी के प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
0: धन्यवाद फरहत।

अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों त्रिवेणी में आज गिनती की बात। दोस्तों यूं तो हमारे जन्म से ही जीवन की गिनती शुरू हो जाती है। 365 दिन हुए नहीं कि हम अपना पहला जन्मदिन मनाते हैं, और साल दर साल जन्मदिवस मनाते हुए जिंदगी के सालों की गिनती जारी रहती है। मगर हमारे दिमाग में गिनती का प्रवेश तब होता है जब हमें पाठशाला में दाखिला मिलता है।

पहले स्कूल, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद भी चाहे हम किसी की नौकरी करें या अपना व्यवसाय करें, 1, 2, 3, 4 की ये गिनती, इन संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग देना हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। अब कॉपी किताबों से निकलकर ये संख्याएं हमारे जीवन में व्याप्त हो जाती हैं, इतनी कि आपस में लड़ पड़ती हैं।

जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, रिश्तों की और दोस्तों की संख्या बढ़ती जाती है। अब रिश्तों की संख्या को सीमित रखा जा सकता है, यानी परिवार कितना बड़ा हो इसका नियोजन किया जा सकता है, मगर दोस्ती का नियोजन कभी ना करें। दोस्तों की संख्या बढ़ती रहे। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसे हम जीवन का पहला दिन मानते हैं, परंतु दिन ब दिन, साल दर साल, जन्मदिन मनाते मनाते कई वर्षों बाद ये एहसास होता है कि असल में ये उल्टी गिनती चल रही है। कब 5, 4, 3, 2, 1 के बाद शून्य होगा कोई नहीं जानता। इसलिए अच्छे कर्म करें, दूसरों के लिए भी जिए, दोस्तों की संख्या बढ़ाएं, मुश्किलों को घटाते चलें, खुशियों को जोड़ते जाएं, गुजरते दिनों के साथ अपना हर पल रंग

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन जो

आप सामरी रहा था प्रायोजित कार्यक्रम मदद हमारी मंजिल आपकी आकाशवाणी छे अने तमे सामरी रहा छो विविध भारती नो सूरत केंद्र 101.1 FM पर अने हवे माणिए कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी। इस फिल्म का गाना है ये, के और श्रेया घोषाल की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, संगीत है जीत गांगुली का।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

0: चलते हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: राउडी राठौड़ फिल्म

0: लवीश कुमार परमार।
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में समय है एक ब्रेक का।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना जब तक है जान, इस फिल्म का गाना हर्षदीप कौर की आवाज, गुलजार के बोल, संगीत ए आर रहमान का।

0: देखिए बड़ी भारी साइंस है, अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सादर समर्पित है अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर को। सदाशिव अमरापुरकर मुंबई सिने जगत का एक बहुचर्चित अदाकार।

0: सदाशिव अमरापुरकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में 11 मई सन 1950 में हुआ था। उनका असली नाम था गणेश कुमार नरवाड़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार से थे अमरापुरकर। बचपन ही से होशियार और सबके दुलारे थे वे। उन्हें घर में और दोस्तों में तात्या नाम से जाना जाता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अहमदनगर में ही हुई। स्कूली जीवन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। कई नाटकों में वो अदाकारी के जलवे दिखाया करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें पुणे विश्वविद्यालय में दाखिल होना पड़ा। यहीं पर वो इतिहास विषय में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करते हुए एक्टिंग की ओर भी मुड़े। सदाशिव अमरापुरकर जब विविध भारती के स्टूडियो आए थे, उन्होंने अपने इस एक्टिंग के सिलसिले का जिक्र करते हुए बताया था। सुनते हैं उन्हीं से।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है, आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कंपटीशन थी और उस ज़माने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था, मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूँगा, प्रोफेसर बनूँगा और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। मैं पुणे से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्न विकाई चीत, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को।

0: सन 1973 में उन्होंने अपनी स्कूली जीवन की सहेली सुनंदा करमरकर से विवाह किया और साथ ही साथ अदाकारी में भी हाथ आजमाते रहे। मुख्यतः वो मराठी नाटकों में काम करते थे। सन 1981-82 में यूं ही सदाशिव अमरापुरकर मराठी नाटक हैंड्सअप में काम कर रहे थे। उस जमाने के जाने माने मराठी अदाकार अविनाश मसूरेकर और भक्ति बर्वे, जो बाद में भक्ति बर्वे इनामदार बनी, इनके साथ वो काम करते थे। तो इस ड्रामे में जो वो कर रहे थे हैंड्सअप में, इस नाटक को देखा जाने माने निर्देशक गोविंद देलानी ने भी। सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग से निर्देशक गोविंद देलानी बड़े ही प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म अर्धसत्य में अदाकारी करने का मौका दिया। फिल्म अर्धसत्य काफी लोकप्रिय हुई और उनका रामा शेट्टी का किरदार भी बड़ा ही कामयाब रहा। हिंदी सिने जगत को सदाशिव अमरापुरकर के रूप में मिला एक खलनायक, ऐसा खलनायक जो अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी से देखने वालों का दिल जीत लेता था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: तेंदुलकर जी के चार पांच नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी। और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्धसत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई। वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया। इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी। तेंदुलकर जी को पूछा, मैंने कहा ये क्या रोल है, बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, दो ढाई सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था, और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था।

इस तरह से उन्हें हिंदी सिने जगत का एक विशाल स्क्रीन अदाकारी दिखाने के लिए मिला। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने और भी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया। हिंदी मराठी के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, हम उन फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें सदाशिव अमरापुरकर ने काम किया था।

0: सन 1993 में पहली बार फिल्म फेयर ने खलनायक को दिया जाने वाला अवार्ड शुरू किया, जिसे पाने का गौरव मिला सदाशिव अमरापुरकर को। अर्धसत्य की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, फरिश्ते वगैरह वगैरह। दोस्तों, फिल्म हुकूमत में उन्होंने लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ विलेन का किरदार किया और वो किरदार इतना सफल हुआ कि ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस तरह सदाशिव अमरापुरकर धर्मेंद्र के लिए सफलता का जैसे एक पैमाना बन गए। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। सन 1991 में एक फिल्म आई थी सड़क। इस फिल्म में उन्होंने एक हट के चैलेंजिंग रोल किया था जो आपको भी जरूर याद होगा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।
1: कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देख देख, मेरे तो बाल खड़े हो गए, हाथ पे जान निकल गई मेरी। ओ, क्या रंग, हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देख ना रूप ना रंग, देख ये किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी।
2: ये सब क्या है चाचा, चलो यहाँ से।
1: मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है। किस्मत जिसे कहते हैं ना हम, वो है ये सब। तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था, तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू, गिरवी। फिर जोर से हाँ बोलना, शर्माती क्यों है? लेकिन इतने साल हो गए इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई इस कोठे पर। आज ये बेचारा अपनी बेटी को छुड़ाने आया है, क्या करेगा, पैसे तो है नहीं इसके पास चुकाने के लिए, इसलिए इसने तुझे लाया है। आज से तू यहाँ रहेगी इस कोठे पर, इसकी बेटी की जगह।
2: नहीं चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं आपकी भतीजी हूँ।
1: रिश्तेदारी का तो खेल ही है सब।
0: मुंबई में एक्टिंग के लिए वे किस तरह पहुंचे, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था, आइए सुनते हैं।
3: नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक परीक्षक थे, उनका नाम था भिकुपई आंगले। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं, मुझे किताब दिया गया, बोले आप गाँव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फ़ोन मुझे आया, दुर्वांची जुड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आई। मैं तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया। और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया।
1: अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया ये? साले उन बदमाशों को यही एक दुकान मिली लूटने के लिए।
4: सर आप इस दुकान में पार्टनर है क्या?
1: अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है।
4: अच्छा अच्छा,
1: आ गया हसमुख, आ गया, आ गया हसमुख। ए हसमुख, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। हाँ मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं।
5: तू अपनी आधी पगार मुझे देगा?
1: पागल हो गया, पागल हो गया, ए भगवान मेरा दोस्त पागल हो गया।
5: अरे पागल नहीं हुआ बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया।
1: कैसे?
5: मैंने है ना दो दिन पहले दुकान बेच दिया था।
1: क्या?
5: हाँ।
1: किसको?
5: ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था।
1: हाँ।
5: उदित करके सारे जरूरत के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको।
1: कॉन्ग्रेचुलेशन। ए आंडू पांडो।
4: यस सर।
1: ये ले, ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज। अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया और तू मिठाई क्यों मंगवा रहा है? अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे मुझे झूठी तसल्ली दे भाई। माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा। जीना तो छोड़ो, पीने नहीं देगा।
0: सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके द्वारा अभिनीत कुछ ये फिल्में भी हैं, जैसे आंखें।
6: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली।

0: સુરત એફએમ સ્પીકિંગ.
1: જી હા દોસ્તો, આપનો જાણીતો અને માનીતો મનપસંદ ફોન ઇન પ્રોગ્રામ
2: હેલો સુરત એફએમ સ્પીકિંગ 101.1 સુરત એફએમ.
1: હેલો સુરત એફએમ સ્પીકિંગ, કોણ બોલો છો?
3: હેલો, કેમ છો?
4: હેલો સુરત એફએમ સ્પીકિંગ
2: 101.1 સુરત એફએમ.
5: નમસ્તે.
6: નમસ્તે, ગુડ મોર્નિંગ.
5: ગુડ મોર્નિંગ. નમસ્તે મેમ. ગીતારામપુર સે ડિસ્ટ્રિક્ટ જાલના મહારાષ્ટ્ર. કૈસે મેમ આપ?
6: એકદમ બઢિયા હું. આપ કૈસે હો?
5: હમ ભી મત અચ્છે સુરક્ષિત હો. આપ પેડ કે નીમ કે ડાળ કે બેઠે મેમ કટિયા મેં આપ સે મેરા કોલ સુરક્ષિત સેફ કો લગાય.
6: ક્યા બાત હે, નીમ કે ઝાડ કે નીચે બેઠે હો?
5: જી મેમ, જી મેમ. ખેતી કે શરૂ કરતે સુરત ફિલ્મ કે કાર્યક્રમ शानदार, बारदार, दर्जेदार होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद
6: है ना. तो आप बताइए ना, आप कितने सालों से आकाशवाणी सुन रहे हो?
5: मैं तो 12 साल से सुन रहा हूँ मैम सूरत आकाशवाणी. बहुत शानदार बारदार होते है, किसी के शरीर से कार्यक्रम होते है, डॉक्टर का होता है, माया का होता है, बुद्धिमा का कार्यक्रम होता है, मुझे बहुत बहुत पसंद है.
6: तो इतने सालों से आप आकाशवाणी सुन रहे हो, आपको पता ही होगा की अभी तो 90 साल पूरे करने वाला है आकाशवाणी.
5: जी मैम, जी मैम, जी मैम. तो
6: कोई ऐसी याद बताइए जो रेडियो से जुड़ी हुई होगी.
5: मैं तो 11 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और मुझे मेरी माता, मेरी बहन, मेरा पिता और सब कुछ आकाशवाणी है. हेलो डॉक्टर का कार्यक्रम होता है, कृषि उद्योग होता है, दी खस का जानकारी होती है, बहुत जानकारी मिलती है, हमें उसको फायदा मिला है मैम.
6: अच्छा, मतलब जो भी खेती के लायक जो भी जानकारी आपको मिली है और आपने उसका यूटिलाइज भी किया है.
5: जी मैम, जी मैम.
6: अच्छा, मतलब आपकी खेती बाड़ी में ये आकाशवाणी ने बहुत बड़ा हाथ भार लगाया है, ऐसे कह सकते
5: हैं. जी मैम, बहुत योगदान भी बहुत देती है मैम, हर हर टाइम हर रोज देती है मैम.
6: अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है. ये तो इसीलिए आप कंटिन्यू कर रहे हो ना आकाशवाणी सुनना. बताइए और बताइए, क्या कहना चाहोगे?
5: मुझे आप सूरत आकाशवाणी जाना देना है मैम. तुम बने, हम बने एक दूसरे के लिए, क्योंकि आकाशवाणी ने हमने सब कुछ सिखाया, मालूम भी, जानकारी भी प्राप्त करती है मैम, इसलिए मुझे गाना देना है.
6: ठीक है, चलो तो आपको आपकी पसंद का गाना सुनवा देते हैं. ठीक है, तो सुनते रहिए सूरत एफएम. आ रहा है आपकी पसंद का गाना सूरत एफएम पर.

0: हर रोज सुबह 7 बजे जरूर सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वेको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: हर मंगलवार और शुक्रवार दोपहर 3 बजे जरूर सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, जिसके प्रथम भाग के प्रायोजक है
2: सुबह जराओ शाम जराओ
3: देव दर्शन थू
4: ओछा व्याज मालोन जो।

0: रात 9:30 बजे सुनना न भूले कार्यक्रम छाया गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: हेलो, सूरत एफएम
2: स्पीकिंग। राजू भाई बोलो।
1: बोलो राजू भाई, कहाँ थी बात करो छो?
2: बोलो
1: शू करो छो?
2: कई नही, आ जड़ी ना काम में अमारू कितना वर्ष फोन लगाव करते, फोन ज नहीं लागे, फोन ज नहीं लागे। आज दिवस फोन अपना

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आकाशवाणी जनसेवाना 90 वर्ष।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: उफ, आ मे महीनो असह्य गर्मी नो महीनो, एसी कूलर नो वपराश वधी जाय तो तेनी सामे लाइट बिल मा पण वधारो ज वधारो। अरे फरियाद शाना माटे करो छो? आ फरियाद नो एक ज उपाय, आजे ज घरे सौर ऊर्जा लगाओ ने मेळवो वीज बिल मा राहत ज राहत। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मा आ योजना अंतर्गत दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड उजवी रही छे मे महीनो सौर ऊर्जा नो महीनो। तो आजे ज घरे सौर ऊर्जा लगाओ ने बनाओ मे महीना ने ठंडक नो महीनो। आ योजना अंतर्गत मळशे 78,000 સુધીની સબસિડી, બાકીનો ખર્ચ ફક્ત 4-5 વર્ષમાં વસૂલ, ઉપરાંત રૂપટોપનું લાંબુ આયુષ્ય, મિનિમમ મેન્ટેનન્સ, મોટી બચત, પર્યાવરણને અનુરૂપ ઉર્જાનો સ્ત્રોત પણ ખરો। તો સૌર ઉર્જા લગાવો અને વીજ બિલમાં રાહત મેળવો। વધુ જાણકારી માટે ટોલ ફ્રી નંબર 19123 પર સંપર્ક કરો।
4: रात 9:30 बजे सुनना न भूले कार्यक्रम छाया गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
5: Fantastic fun for family. 101.1 MHz
6: મિત્રો, તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલ અને રસાકસી પૂર્ણ રહેલા ઇલેક્શનમાં એક સાવ સીધી સાદી પણ મસાલેદાર અને ખાટી મીઠી વાનગી રાતોરાત બહુ લોકપ્રિય બની ગઈ કે અત્ર તત્ર સર્વત્ર તેની જ ચર્ચા થવા માંડી। અને મારા આટલું કહેતાની સાથે જ તમે સમજી જ ગયા હશો કે હું વાત કરી રહી

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कीजिए सूरत एफएम के साथ अपनी दिल की बात।

रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन कीजिए हर रविवार सुबह 9 से 1 बजे तक। हमारा फ़ोन नंबर 0261-223-6209। सुनिए अपने पसंदीदा नए फिल्मी गाने हर रोज सुबह 10 से 11 बजे तक। अरे।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व समारोह में शामिल होने के लिए आज गुजरात के प्रभास पाटन पहुंचे। हेलीपैड पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत पर्व के तहत धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी बाद में वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे शाम सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना

0: और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में गतिरोध जारी रहने के कारण प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत में $100 से अधिक बनी हुई है।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
0: प्रधानमंत्री ने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने पर दोबारा विचार करने जैसे विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने का आग्रह भी नागरिकों से किया। श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने का भी आह्वान किया। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की पहली के लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री हिमंता ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के जलवायु और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन के साथ वर्चुअल बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि उन्होंने सम्मेलन समिति COP31 की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भटियात उपमंडल में काकिरा लाहरू सड़क पर एक कार दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत हो गई, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में से 5 गुजरात के निवासी थे जबकि चालक मंडी जिले का रहने वाला था। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति में सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% के वृद्धि होने का अनुमान है। फुटबॉल में FC बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर वर्ष 2025-26 का ला लीगा खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओं इस
3: फैंटास्टिक फन फॉर फैमिली
4: 101.1 MHz।
5: શું તમે જાણો છો કે સરકારશ્રીની વ્યાજબી ભાવની દુકાનથી અંત્યોદય રાશન કાર્ડ ધારકો અને અગ્રતા ધરાવતા કુટુંબોને મળવાપાત્ર અનાજ બાબતે સંબંધિત જિલ્લા નિવાસી અધિક કલેક્ટરશ્રીને ફરિયાદ કરી શકાય છે? હવે તો માય રાશન મોબાઈલ એપ દ્વારા રાશન કાર્ડને લગતી વિવિધ માહિતી તેમજ મેળવેલા અનાજના જથ્થાની રસીદ મેળવી શકાય છે તથા ફરિયાદ નોંધાવી શકાય છે। અને જો આ અધિકારીઓના નિર્ણયથી સંતોષ ન થાય તો ગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગ ગાંધીનગરને સીધી અરજી કે અપીલ કરી ન્યાય મેળવી શકો છો। ફોન નંબર 079-232-58-490। શું તમે જાણો છો કે પીએમ પોષણ યોજના અંતર્ગત પ્રાથમિક શાળાના 6-14 વર્ષના બાળકોને મળતા આહાર બાબતે સંબંધિત જિલ્લાના નિવાસી અધિક કલેક્ટરશ્રીને તેમજ આંગણવાડી કેન્દ્રોમાંથી 6 મહિનાથી 6 વર્ષ સુધીના બાળકોને સગર્ભા મહિલાઓને તથા ધાત્રી માતાઓને મળતા આહાર બાબતે કોઈ ફરિયાદ હોય તો સંબંધિત જિલ્લા પંચાયતના

0: और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हसीना मान जाएगी से। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें हैं, समीर की रचना है, लीजिए सुनिए ये गीत।
1: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैच टच। छह यार।

0: हर रोज सुबह 7 बजे जरूर सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वेको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: मदद हमारी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मदद हमारी मंजिल आपकी, सांभरो आवती काले सवारे 8:45।
0: रात 9:30 बजे सुनना न भूले कार्यक्रम छाया गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। चलिए अब अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म रोबोट से। इस गीत को गाया है राग्स योगी बी, मधुश्री, तन्वी शाह और कीर्ति सगाठिया ने। स्वानन किरकिरे के बोल हैं और धुन बनाई है एआर रहमान ने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए, ड्रीम गर्ल। इस फिल्म से जॉनिटा गांधी और मीत ब्रोस की आवाजें हैं। इस गीत को संगीत से सजाया है मीत ब्रोस ने।

ये जवानी है दीवानी, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं रेखा भारद्वाज और विशाल ददलानी की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है प्रीतम का।

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: सुब्रत सिन्हा का शब्दबद्ध किया ये गीत सुनिए, आवाज और धुन हिमेश रेशमिया की, फिल्म का नाम रेडियो।

0: प्रौद्योगिकी दिवस के इस खास संगीतमय सफर में बस इतना ही। रेडियो, मोबाइल, टीवी और सेल्फी जैसे आधुनिक रंगों से सजे इन गीतों ने उम्मीद है आपका भरपूर मनोरंजन किया होगा। इसी मुस्कुराहट के साथ दीजिए इजाजत नेहा आगरकर देसाई को, फिर मुलाकात होगी नए अंदाज और नए गीतों के साथ। नमस्कार।
1: સુરતી સિઝલર જ્યાં તમે માણશો ડિલિશિયસ વાતોની સાથે મેલોડિયસ ગીતો।

मंगलवार और शुक्रवार दोपहर 3 बजे जरूर सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, जिसके प्रथम भाग के प्रायोजक है देवदर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।
1: हेलो, आकाशवाणी सूरत एफएम स्पीकिंग।
2: हाँ, सूरत एफएम।
1: कौन बोलो?
2: हाँ मैडम, हूँ एक व्यापारी बोलू छू।
1: ओके, केवो चले छे आपनो व्यापार?
2: चाले राके बेन, बहु मजा नथी आवती।
1: चलवो नहीं, धमधमात दौड़ाओ आपना व्यापार ने। अमारा असंख्य श्रोताओ सुधी पहुँचाड़ो आपनी वात। जाहेरात आपो आकाशवाणी विविध भारती सूरत एफएम पर।
3: सूरत एफएम।
1: अमारो फोन नंबर छे 2234450 અને 9428404140, અથવા તો ઈમેલ કરો suratfm101@gmail.com પર। આપની સમૃદ્ધિનો સારથી સુરત એફએમ 101.1

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर आज आप तय कर रहे हैं नेहा आगरकर देसाई के साथ।

स्वीकार करें नमस्कार। साथियों, इबारत तो आपने पढ़ ही ली होगी। हमारे सभी श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। यदि कोई ऐसे श्रोता है जो फेसबुक पर नहीं है और उन्हें आज की हमारी इबारत नहीं पता है, तो चलिए हम जल्दी से बता देते हैं। अच्छा, एक बात पहले और बता दूं कि इबारत जिन लोगों ने पढ़ी भी है और कमेंट्स किए भी हैं, उनमें लगभग सारे शब्द आ गए हैं, लेकिन एक शब्द है जो नहीं आया है अभी तक। एक नहीं बल्कि दो ऐसे शब्द हैं। तो एक बार जरा इबारत को ध्यान से पढ़िए, शुरू से लेकर अंत तक। हो सकता है कि जिसे आप शब्द ना समझ रहे हो वो शब्द हो। इसमें कोई भी आ सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, नाम, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जल्दी से पहचानना है आपको, और एक बार मैं पढ़ देती हूं ये इबारत आपके लिए। सुरीला सफर कहने के लिए तो एक सफर है, मगर ये वो सफर है जिसका मुसाफिर हमारा मन होता है। और मन के लिए कभी कोई बंधन होता है क्या? वो तो बेबाक पंछी की तरह इस पल यहां तो उस पल वहां होता है। जिस तरह पंछी खुले आसमां में ऊंची उड़ान भरते हैं, उसी तरह आप भी तैयार हो जाइए नेहा के साथ अपने मन की आशाओं को पंख लगा तमन्नाओं के गगन में कहीं खो जाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं मैंने जोर दिया है थोड़ी सी हिंट देने के लिए, ताकि जिन शब्दों को अभी आपने नहीं लिया है उन शब्दों को भी आप सोच सकें और महसूस कर सकें और जान सकें कि वो शब्द कौन सा हो सकता है। वैसे तो एक गीत था जो शुरू में मैंने लगाया था, मगर जब मैंने देखा कि वो शब्द तो अभी तक आया ही नहीं है, तो सोचा एक हिंट दे दी जाए और तब तक कोई दूसरा गीत सुनवाया जाए। और बिल्कुल आप लोगों ने जो दूसरा गीत है वो सही पहचाना है। लीजिए सुनवाते हैं अंदाज फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। सफर, जी हाँ, यही शब्द है जो इस गीत में सुनने को मिलेगा।

तो रुझान आना शुरू हो गए हैं, मगर हम थोड़ा और इंतजार करेंगे ताकि हमारे सभी श्रोता इन इन जो जो, जो दो सवाल दो शब्द जो बाकी हैं उनका अंदाजा लगाकर हमें कमेंट कर सकें। एक साथी ने लिखा है, सभी श्रोताओं को प्रणाम। सुरीला सफर के लिए पूरा समय विविध भारती दे रही है, ये एक अच्छी बात है। हम इबारत को बार बार पढ़ सकते हैं और सोचने समझने का पर्याप्त समय है कि हमारी पसंद कुछ न कुछ टैली कर ही जाए। जी हाँ, कई श्रोता हमसे पूछ रहे हैं कि आज तो इबारत बहुत ही जल्दी पोस्ट हो गई, तो पोस्ट को जल्दी करने की पीछे वजह यही होती है। अगर जल्दी पोस्ट आ जाती है तो उसका यही कारण है कि हमारे श्रोताओं को आराम से समय मिल सके। सुबह की भाग दौड़ होती है, तो अगर सुबह के काम करने के बाद जब बीच में थोड़ा समय मिले तो आप उस पोस्ट से इबारत को पढ़कर और फिर अपने शब्दों का अंदाजा लगा सके। देखिए, मजाक भी करते हैं हमारे साथी। एक साथी ने लिखा है, सुरीला सफर की पोस्ट रात 12 बजे तक नहीं थी, फिर आधी रात को आई। उत्सव फिल्म की तरह मन क्यों बहकारे बहका आधी रात को, बेला महकारे महका आधी रात को। क्या बात है, आप भी मजे ले रहे हैं हमारे। कोई बात नहीं, चलिए अगला भी जो शब्द है काफी लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है। ये गीत है परिचय फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

चलिए, एक शब्द का कयास तो आप लोगों ने लगा लिया है, बिल्कुल सही सही, और वो शब्द है चलिए एक बार इबारत को फिर से पढ़ देती हूं ताकि दूसरे शब्द का अंदाजा लगाने में भी आपको आसानी रहे। तो इबारत है, सुरीला सफर कहने के लिए तो एक सफर है, मगर ये वो सफर है जिसका मुसाफिर हमारा मन होता है। और मन के लिए कभी कोई बंधन होता है क्या? वो तो बेबाक पंछी की तरह इस पल यहां तो उस पल वहां होता है। जिस तरह पंछी खुले आसमां में ऊंची उड़ान भरता है, उसी तरह आप भी तैयार हो जाइए नेहा के साथ, अपने मन की आशाओं को पंख लगा तमन्नाओं के गगन में कहीं खो जाने के लिए। चलिए देखते हैं आप दूसरे शब्द का अंदाजा लगा पाते हैं या फिर मुझे ही बताना पड़ेगा। तो और तब तक चलिए आपको सुनवाते हैं गीत। देखिए, बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि जो दूसरा शब्द है वो हमिंग वर्ड हो सकता है। किसी ने लिखा है, मैंने शब्द से शुरू होने वाला गाना लिखा है, हम तेरे बिना जी ना सकेंगे। किसी ने लिखा है, आज शायद हमिंग से कोई भी गाना सुनाया जा सकता है, हमिंग वाला दीवाना हुआ बादल, कह दो कह दो। इस तरह के कई सारे गीत इन्होंने हमिंग वाले लिखे हैं। एक साथी ने लिखा है, जो गीत सच में बिल्कुल सही निकला है। लीजिए आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की का संगीत।

सीट पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

जिंदगी के इस शोर शराबे में सुरीला सफर महज आवाजों का मेल नहीं बल्कि खुद से मिलने का एक बहाना है। हमारा मन उस बहती नदी की तरह है जिसे किनारों की बंदिशें रोक नहीं सकती। ये तो अपनी ही धुन में कभी यादों के भंवर में उतरता है तो कभी सुकून के साहिल को छूता है। जैसे नदियां आजाद होकर सागर की ओर बढ़ती हैं, ठीक वैसे ही आप भी नेहा के साथ अपनी कल्पनाओं की कश्ती को तैयार कर लीजिए। चलिए आज एहसासों की लहर पर सवार होकर रूह की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां सिर्फ सुकून और सुरों का बसेरा है। ये कमेंट हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, आज का सुरीला सफर की पोस्ट बिटिया नेहा बड़ा मन बनाकर लेकर आई है, वो भी निर्धारित समय से कई घंटों पहले, क्योंकि हर श्रोता अपने विचार भी बड़े मन से व्यक्त कर सके। हम भी ये कहते हुए स्वागत करते हैं कि ये विविध भारती, ये सुरीला सफर, ये विषय से जुड़े गीत, ये प्रसारण तरंगे हमारे दिल को चुराएं, हमको लुभाएं। मन कहे क्यों न मैं गाऊं, क्यों न मैं जुड़ जाऊं सभी मित्रों को, और मेरे लिए भी इन्होंने लिखा है, नमस्कार कर रहे हैं सभी को। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारा जो अगला गीत है उसके बोल, मतलब वही जो शब्द आपने पहचाना है, बिल्कुल सही पहचाना है, शब्द है मन, और ये गीत भी कई लोगों ने सही पहचाना है। सुनिए चित्रलेखा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज़, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है, रोशन का संगीत।

0: देखिए, अभी इससे पहले हम बंधन की बात कर रहे थे तो कहीं आजाद गगन में उड़ने की बातें हो रही हैं इस गीत में। हमारे एक साथी ने लिखा है, माता पिता का बार बार फोन करके हालचाल पूछना, वक्त पर खाना या सोने के लिए कहना कुछ बच्चों को अच्छा बंधन नहीं लगता, पर ये बातें जब माता पिता नहीं रहते तब यही बंधन बच्चों को याद आता है और प्यारा लगता है। जी हाँ, सही कहा आपने। एक साथी ने लिखा है, संसार में सबसे खूबसूरत बंधन वो है जो रक्त से नहीं बल्कि भावना से जुड़ा होता है। माँ का अपनी संतान से जुड़ाव, भाई बहन की नोक झोंक या मित्रों का निस्वार्थ प्रेम, ये सभी बंधन हमें ये एहसास कराते हैं कि हम इस विशाल दुनिया में अकेले नहीं है। एक ने लिखा है, जीवन में बंधन तो होना ही चाहिए, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य और दोस्तों का प्यार का बंधन, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक और नैतिक बंधन भी होते हैं, वो भी निभाएं तो वसुधैव कुटुंबकम वाला बंधन सच हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब सुनिए ये संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेली

फोन नंबर 0224002466 तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। समय की एक अजीब बात यह है कि जब समय अपनों के साथ गुजारा जाए तो कम लगता है और जब कठिन समय आता है तो वही समय बड़ा ज्यादा लगने लगता है। बात हो रही है पल की। जी हाँ, अगला शब्द है पल। ये पल वही होते हैं जो अच्छे हों तो जल्दी से निकल जाते हैं और अगर कठिन परिस्थिति में हो तो फिर बड़ा दुख देते हैं और बड़े लंबे लगते हैं। तो चलिए पलों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं ताकि हम उस शब्द तक पहुंच सके जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पहचाना है। पहचानिए उस शब्द को, वरना होगा ये कि लिस्ट में उस गीत को पीछे करते करते करते कहीं वो गीत लिस्ट से बाहर ना हो जाए। समय का काटा चल रहा है तो जल्दी से उस शब्द को भी पहचानिए जो अभी तक आप नहीं पहचान पाए हैं। और तब तक सुनिए ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। घड़ी का काटा बढ़ रहा है, शब्द को जल्दी से पहचानिए। एक ही शब्द है जो अभी तक किसी ने नहीं पहचाना है, बाकी सारे शब्द लिस्ट में आ चुके हैं।

बंधन को लेकर एक साथी लिखते हैं, बंधन अनुशासन का दूसरा रूप है, इसमें व्यक्ति संयमित रूप से रहता है। तो किसी ने लिखा है, अब जाकर मेरा अनुमानित गाना हो रहा है। खैर, बंधन की बात आपने पूछी तो पूरा संसार ही बंधन है। हम तो विविध भारती के बंधन से जकड़े हुए हैं, बिना बंधन के संसार चल ही नहीं सकता है। इसके पीछे विज्ञान है, धर्म है और दर्शन भी है। अगर विवेचना करने लगूं तो पूरी एक पुस्तक ही बन जाएगी। क्या बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन पर यदि हम बात करने निकले तो एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। हमारे कुछ साथी हैं जो अलग अलग कयास लगा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे इस शब्दों पर गीत आ सकता है, या फिर तैयार, या फिर बेबाक, इन शब्दों पर गीत हो सकता है, या फिर जिसका, ये भी किसी ने लिखा है। चलिए आप लोग अंदाजे लगाते रहिए, हम गाने सुनवाते रहेंगे और तब तक आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, जो कि है, आपने सही पहचाना है, आप में से कुछ श्रोताओं ने लिखा है आसमां के नीचे, इस गीत को लिखा है, तो बिल्कुल आप सब सही थे। ज्वेल थीफ फिल्म का ये गीत है, किशोर कुमार की आवाज, लता मंगेशकर ने साथ दिया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और एस जी बर्मन का संगीत।

कई सारे श्रोताओं ने उस शब्द को भी पहचान लिया है। जी हाँ, आप लोगों ने ये शब्द बिल्कुल सही पहचाना है। देखिए, थोड़ी सी मटरगस्ती करना तो हमें भी पसंद है कि शब्दों के बीच में कहीं नाम, सर्वनाम, विश्लेषण, कुछ भी हम विशेषण कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, ये आपने सही कहा। एक साथ ही लिख रहे हैं, हमसे जो शब्द छूट गया है वो शायद आपका ही नाम है नेहा, है ना। किसी ने लिखा है नेहा शब्द पर भी गाना होगा, तो किसी ने लिखा है नेहा जी आपका नाम इबारत के अंदर है। तो आपने अंदाजा तो लगा ही लिया कि नाम इबारत के अंदर है तो इस पर गीत हो सकता है। फिर किसी ने लिखा है तो से नेहा लगा के हार गई सजना, तो नहीं सोचा है आपने इस गीत के लिए उन्होंने लिखा है। फिर किसी ने लिखा है नेहा जी एक शब्द मैंने पहचाना है जो किसी ने नहीं लिखा, आपका सुंदर सा नाम नेहा, धन्यवाद इसे सुंदर कहने के लिए। फिर किसी ने लिखा है मे बी नेहा हो सकता है लास्ट वर्ड, तो लास्ट तो नहीं, हम इसे अभी ही सुनवा रहे हैं। और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं मैं नशे में हूं, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और शब्द पहचानने के लिए धन्यवाद।

हमारे साथी बिल्कुल चौंक गए हैं। कुछ अलग अलग तरह की टिप्पणियां आई हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। किसी ने लिखा है, वाह ये गाना दिमाग में नहीं आया जबकि बहुत बार सुना हुआ है। आपका नाम भी दुर्लभ है नेहा जी, गाने खोजने में दोपहर को तारे नजर आ गए। देखिए अब ऐसा मजाक मत कीजिए कि नेहा नाम दुर्लभ है, देखिए एक ढूंढने जाएंगे 100 मिलेंगी। चलिए तो ही मजाक की बात। किसी ने लिखा है, वाह बहुत सुरीला गीत हो रहा है सुरीले सफर में, नेहा शब्द से मैं पहली बार ये गीत सुन रही हूँ। और किसी ने लिखा है कि हाँ नेहा जी मैंने ये गाना भी लिखा था। क्या बात है, आप सभी ने सही पहचाना, ये अच्छा लग रहा है जानकर। मुझे भी थोड़ा सा यही था, शंका थी कि क्या ये गीत सच में कोई पहचान पाएगा या फिर ये शब्द कोई पहचान पाएगा, मगर आपने पहचान लिया तो ये सुनकर मुझे, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे एक साथी हैं जिन्होंने पहले ही लिखा था, ये कमेंट पहले ही आया था कि कुछ गाने दिमाग में आ रहे हैं, काफ़ी सारे तो लोगों ने लिखे हैं, एक तो शायद वो शब्द नहीं लिखा है, वो शाम कुछ अजीब थी, या वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। एक आपके नाम से गाना है, वो शायद किसी ने नहीं लिखा है, सजन संग नेहा काहे लगाए हाँ कि हम पछताएं। तो बिल्कुल ये गीत आपने पहले ही बता दिया था और वो गीत हमने सुनवा भी दिया। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छाँव में, गीत और संगीत किशोर कुमार का।

जी हाँ, तो ये शब्द था गगन, और आप सभी ने जिन्होंने भी इस गीत को लिखा है उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना है। हमारे एक साथी लिखते हैं, फुर्सत मिले तो अपनी कमियों को गुदगुदा देना, बेबाक परिंदा बनकर जरा सा मुस्कुरा देना, सफर तो जारी है इस हर पल हर मोड़ पर, कभी खुद को भी उस सुरीले गगन का पता देना। तो ये था हमारा शब्द गगन। और साथियों, आपने किसी किसी ने लिखा है कि वाह नेहा जी, गाने में भी आपने अपना नाम ढूंढ लिया। हाँ जी, ढूंढ लिया, इतना कॉमन सा नाम है। फिर एक साथी ने लिखा है कि नाम दुर्लभ तो नहीं है पर गीत बिल्कुल दुर्लभ है। जी हाँ, ये गीत दुर्लभ है या शायद कम सुनने में आता है। और सच बताऊं तो ये गीत मैंने भी पहली बार ही सुना, जब मैंने शब्द पर गीत ढूंढने की कोशिश की तो मुझे ये शब्द मिला। एक और गीत है जिसमें नेहा नाम आपको मिलेगा, फिर कभी जब सुरीले सफर में आपसे मुलाकात होगी तो उस गीत को शामिल किया जाएगा। देखिए, हिंट दे दी है, अगली बार ढूंढने की पूरी पूरी जिम्मेदारी श्रोता वर्ग की रहेगी। चलिए, अब इस सुरीले सफर कार्यक्रम से नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

दोस्तों त्रिवेणी में आज गिनती की बात। दोस्तों यूं तो हमारे जन्म से ही जीवन की गिनती शुरू हो जाती है। 365 दिन हुए नहीं कि हम अपना पहला जन्मदिन मनाते हैं और साल दर साल जन्मदिवस मनाते हुए जिंदगी के सालों की गिनती जारी रहती है। मगर हमारे दिमाग में गिनती का प्रवेश तब होता है जब हमें पाठशाला में दाखिला मिलता है।

पहले स्कूल, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी और फिर उसके बाद भी चाहे हम किसी की नौकरी करें या अपना व्यवसाय करें। 1, 2, 3, 4 की ये गिनती, इन संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग देना हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। अब कॉपी किताबों से निकलकर ये संख्याएं हमारे जीवन में व्याप्त हो जाती हैं, इतनी कि आपस में लड़ पड़ती हैं।

जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, रिश्तों की और दोस्तों की संख्या बढ़ती जाती है। अब रिश्तों की संख्या को सीमित रखा जा सकता है, यानी परिवार कितना बड़ा हो इसका नियोजन किया जा सकता है, मगर दोस्ती का नियोजन कभी ना करें। दोस्तों की संख्या बढ़ती रहे। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसे हम जीवन का पहला दिन मानते हैं, परंतु दिन ब दिन, साल दर साल, जन्मदिन मनाते मनाते कई वर्षों बाद ये एहसास होता है कि असल में ये उल्टी गिनती चल रही है। कब 5, 4, 3, 2, 1 के बाद शून्य होगा कोई नहीं जानता। इसलिए अच्छे कर्म करें, दूसरों के लिए भी जिए, दोस्तों की संख्या बढ़ाएं, मुश्किलों को घटाते चलें, खुशियों को जोड़ते जाएं, गुजरते दिनों के साथ अपना हर पल रंगीन बनाएं।

0: है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय

0: सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
0: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
1: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
2: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
3: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
4: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय

0: आईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा प्रादेशिक समाचार प्रवेश अड़ियचा वांचे छे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहूं कि सोमनाथ मंदिर अतूट श्रद्धा दिव्यता और देश शाश्वत आत्मा पवित्र प्रतीक तरीके उभू है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में सोमनाथ अमृत महोत्सव ने संबोधता श्री मोदी कहूं कि सोमनाथ मंदिर आपने याद अपावे छे कि कोई देश त्यारे अस्तित्व में रही सके जयरे तेनो वारसो जलवाई रहे। श्री मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव ने आगामी 1000 वर्ष माटेना भारतनी प्रेरणा पण गणाव्यो। श्री मोदी कहूं कि 75 वर्ष पहला आजना दिवसे सोमनाथ मंदिरनुं पुनर्निर्माण ए कोई सामान्य प्रसंग नहोतो। वर्ष 1951 में सोमनाथ मंदिर की पुनः प्राण प्रतिष्ठाए भारत की स्वतंत्र चेतना उद्घोष कर्यो हतो।
2: पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है।
1: श्री मोदी पोताना संबोधन में 11 मे 1998 ना दिवसे भारते करेला पोखरण परमाणु परीक्षण नो पण उल्लेख कर्यो हतो।
2: देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमता को दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: कार्यक्रम दरमियान श्री मोदी सोमनाथ अमृत पर्व निमित्ते विशेष स्मारक टपाल टिकट तेमज 75 रूपया विशेष स्मारक सिक्को पर बहार पाड्यो। प्रधानमंत्री

एल परदेसी का लिखा ये गीत सुनिए, जिसकी लय बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। गीत को आवाज दी है शंकर दास, गीता दत्त और साथियों ने। फिल्म का नाम दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: असली नकली इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की, शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई है।

धनीराम का संगीतबद्ध किया ये गीत अब सुनिए, शेरोज श्रीवास्तव के एक लिखा हुआ भी है ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, सबिता बैनर्जी और सीता की। फिल्म का नाम बाजे कुंगरू।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बना

0: आए खास भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: चाइना टाउन फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, रवि की धुन। और सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम से इस गीत के साथ नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: और मंजरी क्या हाल है?
2: हम भी ठीक हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी सखी और सखियां साथी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई रेडियो सेट के करीब तो वो सुबह से होते हैं क्योंकि रेडियो विद भारती तो वो बहुत सुनते हैं शौक से।
1: बिल्कुल।
2: और खासकर सखी सहेली के लिए सब एक साथ जुड़ जाते हैं कि आज कौन आ रहा है, कौन क्या विषय लेकर आ रहा है।
1: भाई कोई भी आए लेकिन हर एक आकर जो है हमारे सभी सखियों और सखाओं से उतना ही प्यार करता है जितने आप और हम करते हैं।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और देखो मंजरी गर्मी का मौसम चल रहा है, इन दिनों हम गर्मी को लेकर

0: बहुत चिंतित
1: जी
0: हैं, जो हमारे पशु हैं, पालतू पशु हैं या आवारा पशु हैं, उनका भी हमें इस गर्मी में बहुत ध्यान रखना है, पता है ना
1: बिल्कुल
0: आपको।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे पशु हैं उनके लिए, आप जो घर में पालते हैं तो उनके लिए बकायदा कुछ लोग तो शेड बनाते हैं, और जो नहीं बनाते तो उनके पेड़ के नीचे बंधी रहती है, या आपके पास सुविधा है आप कर सकते हैं मैनेज, तो आप एक थोड़ा सा छप्पर जैसा कुछ डाल दीजिए जिसके अंदर वो पशु रह सकें, और उनका खाना तो आप समय पर आप वो सब देते ही, लेकिन
0: बिल्कुल,
1: नहलाना जिसे कहते हैं, अगर
0: वो बहुत
1: तालाब
0: जरूरी
1: है तो
0: है।
1: आप उसमें ले जाके पशु को नहला सकते हैं, तो कुछ लोग नहलाते भी, ऐसा नहीं, हमने देखा है कई बार गाँव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बहुत सारी भैंसें एक साथ नहा रही हैं, वो गर्मी इतनी चिलचिलाती धूप होती है, लेकिन वो पूरी बॉडी उसमें ठंडी कर
0: ठंडी
1: लेती है
0: रहती है,
1: तभी निकलती है, तो
0: बिल्कुल
1: हमसे जितना हो सके हम लोगों से उतना हमें उन पशुओं के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे, हम जब देते तभी वो खाते हैं,
0: नहीं, बिल्कुल
1: है
0: ये बात
1: ना।
0: भी है। लेकिन एक जो संवेदनशीलता, जो एक मानवीय रिश्ता होता है, एक
1: जी
0: संवेदना का जो रिश्ता है, वो हर कण कण में व्याप्त हर कीट पतंगे के लिए हमारे मन
1: बिल्कुल
0: में होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, गांव में तो इस तरह की छपरा बना दिया जाता है
1: बिल्कुल
0: जहां भैंसे हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, जो भी आपके पालतू पशु हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है मंजरी, जगह के अभाव के कारण हमारे कुछ साथी लोग क्या करते हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, और पशु दिन भर गर्मी में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और ऐसे समय में हमारे द्वारा फेंकी गई पॉलिथीन को भी वो
1: हाँ
0: चबाते रहते हैं। इस
1: बिल्कुल
0: गर्मी के मौसम में अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके मुंह से फिर झाग आ रहे होते हैं, और यही पॉलिथीन उनके पेट में जाकर चिपक जाती है, जो उनकी बीमारी का भी, अस्वस्थता का कारण, यहां तक कि मौत का कारण भी
1: बिल्कुल,
0: बन जाती है।
1: तो कहना चाहिए कि हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है, कि हम स्वच्छता के ऊपर भी नजर रखें, कि पॉलिथीन वगैरह प्लास्टिक से बनी चीजों को हम डस्टबिन में ही डालें, या
0: बिल्कुल
1: कचरा जहां डालते हैं वहां डालिए, जिससे हमारे पशु उनको ना खा सकें, और पशुओं का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हम जितना उनसे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं।
0: हाँ
1: और देखिए मंदाकिनी जी, आज जो हमने विषय लिए हैं उसमें है बिहार के व्यंजन, जिसमें दाल पीठा और सत्तू का शरबत, हमारे
0: अच्छा
1: साथियों ने भी बहुत सारी रेसिपी लिखकर
0: क्या
1: भेजी है,
0: बात है।
1: तो हम पढ़ेंगे, आनंद लेंगे, फिलहाल तो कुछ बनाएंगे नहीं, ना आपको हम खिलाने वाले हैं अभी तक
0: हाँ
1: फिलहाल,
0: वही हम आपसे पूछने वाले थे कि आप बना के लाई हैं क्या।
1: नहीं, है ना,
0: ये गलत
1: तो
0: बात है ना।
1: ये अगली बार के लिए, एक बार बताएंगे अगली बार खिलाएंगे, है ना। तो कथा सुधा में हम कहानी लेकर आए, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग एक आज हम लोग आपको सुनवाएंगे, और रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है, तो इसकी वजह आप लिखकर भेजिए हमें संदेश में, और कुछ मीठे खट्टे किस्से भी लिखकर भेजिए। और मंदाकिनी जी, आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे।
0: बिल्कुल सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो मंजरी गाना तो बहुत सुंदर था,
1: जी
0: और वैसे तो देखा जाए तो जब हम किसी के साथ चोरी चोरी बंध जाते हैं ना, तो यही गाना गुनगुनाते भी हैं.
1: बिल्कुल, और कदम भी तो थिरकने लगते हैं ना ऐसे, जब
0: बिल्कुल.
1: धुन सुनाई देती है, ऐसे मूव सुनाई देते हैं, तो लगता है बस एक बार नाच ही लो
0: नाच ही लो, तब तो खैर मन का हाल ही क्या होता होगा, ये तो वही
1: जी
0: जानता है जिसके
1: जी
0: साथ ये होता होगा.
1: जी जी बिल्कुल। तो कथा सुधा में हम आज कहानी सुनाने वाले हैं अपने साथियों को, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, का भाग एक।
0: चलिए तो सुनते हैं कथा सुधा में ये कहानी.
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
4: उन दिनों दूध की तकलीफ थी, कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। दो चार दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती कि दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी, लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे, इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे, वो उसे पूरी आजादी से पाथे, उपेले बनाए, घर लीपें, पड़ोसियों को दें, या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद न होगा, और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वो गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और न किसी को इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई, ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी, उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत।

0: मूरत है, मूरत कैसी भोली भाली सूरत, मगर धीरे धीरे यहां पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहां तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया। कितना ही उबालो, न कहीं मलाई का पता, न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का मौका न था, बंद कर देने का जिक्र ही क्या। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो। 8 आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह ना लगाता, पीना तो दूर रहा। आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचख मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती,
1: ये क्या है, इतना खराब दूध? ये दूध ले जाकर उन्हीं के सर पे पटका। हाँ,
0: मैं नौकर को मना करता। वो कहती,
1: अच्छे दोस्त है तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती। क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देकर क्या कहेंगे? गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा ना? रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा।
0: चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे। ये हरकत उनकी जानकारी में होती हो, ये बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं? और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीवी जी भी उनके यहां कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वो यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी? सरीहन आंखों में धूल झोंकेंगी और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए ये गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत तो ये हुई कि 3रे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया। गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए। वो बीच आंगन के एक कोने में पड़ी रह सकती है। उसे दुहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दुह लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर, जल्दी हजम हो जाता है। न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्य वर्धक है। संयोग से मेरे यहां जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया।
2: अरे साहब, पछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कमखोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही भी आई है, सिर्फ 25 रुपए में आ जाएगी।
0: मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुआ, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और 3रे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा। जो जो गुण बताए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मुसलो ढोल बजाएंगे, ये मसला इतने दिनों बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही ये बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दुह पाता था। लेकिन यह तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, काम धेनु है। बीवी ने सोचा

0: इसे कहीं नजर ना लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ झूठा बचता, देवी जी खुद जाकर उसे खिलाती। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई होगी। बात क्या है? पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
1: अरे साहब, देहात की बकरी है, जमींदार की, बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
0: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां? इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहां बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग हैं, कहार घंटे दो घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गांव की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दोगुना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था। मकान के सामने सहन था। जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग, बाग से निकलिए तो कछुओं के खेत थे, किसी में आलू किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 शेर की जगह मुश्किल से शेर भर दूध निकलता था। लेकिन यह तस्कीन थी कि दूध खालिस है, यही क्या कम है? मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे। कृष्ण जी भी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी? लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करे? नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरियां पत्तियां चर लेती थी। मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करें। यूं बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी। उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी, लेकिन बाग और खेत में घुस गई। आजादी नहीं है इसे वो शायद न समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला,
2: बाबूजी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध के रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे तो कांजी हाउस भेज देंगे।
0: अभी वो अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया।
3: अरे मैं हाँ हाँ करती रही, मगर ई बकरिया तो भैया का बताएं हमारे खेत में ही घुस गई। सारा का सारा खेत हमारा चौपट कर दिया। इसके पेट में तो भैया भवनी बैठी है। यहां कोई तुम्हारा दबेल नहीं है। हाँ, हकीम होंगे, अपने घर के होंगे। देखो बाबू, अगर बकरी रखना है तो बांध कर रखो, बताए देते हैं, नहीं तो इसका गला ऐंठ दूंगी।
0: मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था। बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे

0: मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौकों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में ये गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकड़ी से बोली,
1: ये ले जा, तू कानी हौज पहुंचा दे। और क्या करेगी, नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। और हां, खबरदार जो एक बात भी मुंह से निकाली। क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे। अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने चली आई है। मैं अभी पुलिस में इत्तला कर दूं तो बंधे बंधे फिरोगे।
0: बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो, ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया,
1: मेरा एहसान तो मानोगे ना कि शैतानों को कितनी आसानी से मैंने भगा दिया। लगे उल्टे डांटने। गवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में ही नहीं आती है। उसे ये लोग कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को भला कौन नहीं दबाना चाहता।
0: खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया,
2: अरे साहब, बकरी चराना मेरा काम नहीं है।
0: मैंने कहा, तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है? जरा उसे देखते रहा करो कि किसी खेत में ना जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता।
2: देखिए, मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए।
0: आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था, और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची। मेरे दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज ये कवायद करनी पड़ी। थक गया मगर मेहनत सफल हो गई, आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहां से? पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर एतराज करेगा, कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा, क्यों एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़े, मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे। राजी हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाएगा? चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला,
3: अरे ये क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का? लाइए, मैं काट देता हूं।
0: मैं कट गया, कुछ जवाब न सूझा। इसमें क्या बुराई है, अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह? जवाब कुछ हल्के बेहकीकत बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी के आत्मगौरव ने जबान बंद कर दी। काछी ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा,
3: ये पत्तियां कहां रख जाऊं?
0: मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा कर ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
3: भला आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे, चलिए मैं रख दे।

0: देखता हूं। मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ ये देहाती कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से खाली नहीं।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काछी जयंत पात्रकर, काछी की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा में सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सोमवार।
2: तो मंदाकिनी जी, अभी हमारे सभी साथियों ने सुनी ये कहानी, उसी पर एक संदेश भी लिखकर भेजा है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध व्यंग कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो में लेखक दूध की मिलावट से परेशान होकर घर में बकरी पालने की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहानी घरेलू सुख सुविधा, पशुपालन की जिम्मेदारी और पड़ोसियों के साथ होने वाले विवादों पर कटाक्ष करती है। कहानी का सार, दूध की समस्या से तंग आकर लेखक एक दोस्त के साथ मिलकर गाय खरीदते हैं, लेकिन गोबर और साफ सफाई की समस्याओं के कारण दोस्त के घर गाय रहती है और फिर दूध में मिलावट शुरू हो जाती है। बकरी का विचार, अंत में जब गाय का विकल्प काम नहीं करता तो लेखक बकरी खरीदने का फैसला करते हैं, ये सोच करके ये आसान होगा। परिणाम, बकरी से सभी भी परेशानी कम नहीं होती क्योंकि वो खेत में घुसकर नुकसान करती है, जिससे पड़ोसियों से विवाद होता है। अच्छी सी समीक्षा लिखकर भेजी है इन्होंने।
3: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, वही जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि लोग अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और वो खुला जो पशु है जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए अपने पशुओं को हमें बांध कर रखना चाहिए। और अभी वक्त है मंजरी एक अंतराल का।
4: શું તમે જાણો છો કે સરકારશ્રીની વ્યાજબી ભાવની દુકાનથી અંત્યોદય રાશન કાર્ડ ધારકો અને અગ્રતા ધરાવતા કુટુંબોને મળવાપાત્ર અનાજ બાબતે સંબંધિત જિલ્લા નિવાસી અધિક કલેક્ટરશ્રીને ફરિયાદ કરી શકાય છે? હવે તો માય રાશન મોબાઈલ એપ દ્વારા રાશન કાર્ડને લગતી વિવિધ માહિતી તેમજ મેળવેલા અનાજના જથ્થાની રસીદ મેળવી શકાય છે તથા ફરિયાદ નોંધાવી શકાય છે। અને જો આ અધિકારીઓના નિર્ણયથી સંતોષ ન થાય તો ગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગ ગાંધીનગરને સીધી અરજી કે અપીલ કરી ન્યાય મેળવી શકો છો। ફોન નંબર 079-232-58-490। શું તમે જાણો છો કે પીએમ પોષણ યોજના અંતર્ગત પ્રાથમિક શાળાના 6-14 વર્ષના બાળકોને મળતા આહાર બાબતે સંબંધિત જિલ્લાના નિવાસી અધિક કલેક્ટરશ્રીને તેમજ આંગણવાડી કેન્દ્રોમાંથી 6 મહિનાથી 6 વર્ષ સુધીના બાળકોને, સગર્ભા મહિલાઓને તથા ધાત્રી માતાઓને મળતા આહાર બાબતે કોઈ ફરિયાદ હોય તો સંબંધિત જિલ્લા પંચાયતના ફરિયાદ નિવારણ અધિકારીશ્રીને અરજી કે ફરિયાદ કરી શકાય છે। અને જો આ અધિકારીઓના નિર્ણયથી સંતોષ ન થાય તો ગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગ ગાંધીનગરને સીધી અરજી કે અપીલ કરી ન્યાય મેળવી શકો છો। ફોન નંબર 079-232-58-490।
3: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
2: और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश दिवस के ऊपर लिखकर भेजे हैं। एक साथी लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण है, यहाँ से लिखा है इन्होंने कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण है कि पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न, ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का सम्मान करता है। स्वदेशी तकनीकी, इस दिन भारत में पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ था। पूर्व पीएम वाजपेयी का योगदान, इन्होंने लिखा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की तकनीकी क्रांति को रेखांकित करने के लिए इस दिन को घोषित किया था।
3: बिल्कुल सही लिखा और आपने बहुत ही डिटेल में अपनी बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की हमें याद दिलाता है। ये दिन देश

0: के प्रकरण परमाणु परीक्षणों की याद दिलाता है, यानी कि जो हमारी तकनीक है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके पीछे वैज्ञानिक इंजीनियर जो भी योगदान देते हैं तो उनको एक कहना चाहिए एक सम्मान देने के लिए
1: देने
0: भी ये
1: का,
0: दिवस मनाया
1: बिल्कुल
0: जाता है
1: बिल्कुल
0: और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को याद करने के लिए ये दिन समर्पित है। तो इस दिन की सभी को हार्दिक बधाई देते हैं।
1: बिल्कुल। और अब सुन लेते हैं गीत।

देखिए, हम बात करने वाले हैं रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब, क्या वजह है? तो ये केवल आज के समय की बात नहीं मंदाकिनी जी, बल्कि इंसानी भावनाओं और व्यवहार से जुड़ा एक गहरा विषय है। परिवार और रिश्तेदार हमारे जीवन की नींव होते हैं, लेकिन कई बार मित्र हमारे मन के अधिक निकट आ जाते हैं। इसके पीछे कई भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कारण तो होते ही हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे पहली वजह होती है कि मन की आज़ादी। हम अपने दोस्तों के साथ खुलकर मन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो हमारी बात को इधर उधर नहीं पहुंचाएगा। और ये भी, मित्र बनाने से पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा मित्र वो सही है कि नहीं। हमने जो अपने दिल की बात कही है वो किसी और को तो नहीं बता रहा है। तो मित्र वही अच्छा होता है जो दूसरे मित्र की बात को अपने तक रखे। और रिश्तों में क्या होता है, रिश्तों में जैसे हमने कोई बात बताई तो वो बस एक दूसरे को बताने लग जाते हैं, तो बात एक घर से ना होकर कई घरों में पहुंच जाती, परिवार में। तो इसीलिए यही वजह होती है कि हम मित्र के बहुत

0: होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या है जो साइकोलॉजिकली हम जब जुड़ते हैं ना, तो हम दोस्ती में ज्यादा फ्रीडम महसूस करते
0: जी
1: हैं, है ना। रिश्तों में एक बंधन होता है, जब हम किसी रिश्ते में बंधे होते हैं या रिश्तेदारी में निभा रहे होते हैं, वहां एक बंधन है, सीमाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती है। आप खुले खुले तरीके से अपनी बात कह सुन सकते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं, और दोस्ती होती भी ऐसी है। आपने
0: बिल्कुल
1: देखा है अपने कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे स्कूल की जो
0: जी।
1: सहेलियां थी, हम उनसे क्या क्या बातें कर जाते थे, उनकी क्या क्या बातें सुन लेते थे,
0: उनकी
1: और
0: डांट भी हम सुन लेते थे, उनकी राय भी हम सुन लेते थे,
1: हाँ
0: और रूठना मनाना तो चलता था।
1: चलता ही
0: लेकिन
1: था।
0: रिश्तों में क्या होता है, जब कहते हैं ना मन में खटास आ जाती है, दोस्ती में
1: हाँ
0: भी खटास
1: तो
0: आती है,
1: आती
0: लेकिन
1: है, लेकिन वो दोस्ती नहीं होती। मैं
0: हाँ
1: समझती हूँ अगर दोस्ती में खटास आती है तो
0: जी
1: कहीं स्वार्थ आ जाता है, तब
0: बिल्कुल।
1: दोस्ती में खटास आती है, वरना तो दोस्त हमेशा से दोस्त ही रहते हैं।
0: दोस्ती रहती है,
1: जहां दोस्ती टूटी नहीं, दोस्त दूर हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ
0: स्वार्थ
1: या
0: उनके
1: मन में कुछ
0: अंदर,
1: था।
0: बिल्कुल सही
1: वरना
0: बात।
1: आज भी हमारी कुछ सहेलियां या हमारी मित्र आज भी बरसों से हैं, उनसे अगर हम इतने दूर रहकर भी हम बात करते हैं, कभी तुम्हें अपने बचपन के लोग मिलते होंगे तो तुम
0: जी
1: बात करती हो ना,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि उनसे कोई स्वार्थ नहीं है।
0: बिल्कुल। सौ की सीधी एक बात कि आपके अंदर अगर स्वार्थ है, ईर्ष्या जलन है, तो
1: तो आप
0: अहंकार
1: नहीं
0: है,
1: निभा
0: तो आप
1: पाओगे,
0: दोस्ती नहीं निभा
1: नहीं निभा
0: पाएंगे, है ना।
1: पाओगे।
0: तो हमारे
1: दोस्ती शब्द तो बहुत बड़ा है
0: बहुत
1: मंजरी,
0: बड़ा है
1: मुझे लगता है कि हम आपसी बातचीत को भी नहीं लंबा कर सकते,
0: जी,
1: जारी नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार या कुछ बातें हमारे बीच में आ गई हैं।
0: आ गई जी,
1: लेकिन अगर वो नहीं आई हैं तो वो दोस्ती का अगर हमने तमगा नहीं भी दिया तब भी वो बातचीत लंबी चल सकती है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि सभी रिश्ते हमें जन्म के साथ मिलते हैं, दोस्त हम खुद चुनते हैं। सही बात है, स्कूल कॉलेज नौकरी आस पड़ोस में चारों तरफ हम मित्रों के साथ और वे हमारे साथ हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस तकनीकी के युग में भी सच्चे मित्र हैं। बहुत तो मिलना नहीं होता बाहर रहने वाले मित्रों से, पर आज भी खतों मोबाइल के द्वारा जुड़े हैं। मित्रों से जुड़े रहने में परिवार का सहयोग भी सहयोग है, और बहुत अच्छी
1: बिल्कुल।
0: बात है जो आजकल हमें सोशल मीडिया की सुविधाएं मिली हुई है, व्हाट्सएप है या मोबाइल है, तो इनके द्वारा हम अपने मित्रों को खोज भी लेते हैं, पुराने पुराने कहाँ गए
1: हाँ
0: कहाँ
1: हाँ सही बात है, कुछ
0: गए,
1: मित्रों ने हमें खोज लिया, अरे आप
0: है
1: कहाँ रहती हैं, आप
0: ना।
1: वही मंदाकिनी है
0: हमने
1: जो
0: खुद ही
1: कभी साथ पढ़ा करती
0: जी
1: थी, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी बात है ये कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी,
0: जी
1: है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही
1: वो
0: बात
1: एक
0: है,
1: बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्ती का, जहां
0: बिल्कुल
1: उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है।
0: कुछ भी नहीं। अगर
1: तो
0: वो उनकी दोस्ती को समझ लिया तो समझ
1: हाँ
0: लीजिए आपने सब कुछ समझ
1: समझ लिया,
0: लिया।
1: तो हम अगर उसकी 10% दोस्ती भी निभा पाए तो समझ
0: बहुत
1: लीजिए कि हम सच्चे दोस्त हैं, है
0: जी
1: ना।
0: जी
1: एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते खून से तैयार होते हैं, दोस्त प्यार से मिलते हैं, रिश्तों में नसीब का साथ है, दोस्तों में सुखद सहवास है, रिश्ते बंधन कारक है, मित्र स्वयं स्फूर्त हैं। आज के जमाने में रिश्तेदार पहले तन और फिर धीरे धीरे मन से दूर हो जाते हैं, और समान विचारों वाले दोस्त नजदीक आते रहते हैं। कभी कभी रिश्ते दिल को जला देते हैं तो दोस्त सच्चे स्नेह के फूल खिला देते हैं, इसलिए रिश्तों से भी मित्र ज्यादा करीब होते हैं।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं, अक्सर मित्र दोस्तों का रिश्ता खून या भावनात्मक रिश्तों से ज्यादा करीबी और भावनात्मक रूप से सुरक्षित तो होते हैं, क्योंकि दोस्ती में अपेक्षाएं कम और समझ ज्यादा होती। कई बार दोस्त सुख दुख में परिवार से बेहतर साथ निभाते हैं और बिना किसी निर्णय के हमें अपनाते हैं। दोस्ती की मिसाल लोग महाभारत के पात्र कर्ण और दुर्योधन का भी देते हैं। बहुत सही बात लिखी इन्होंने।
1: बिल्कुल। मैं एक श्रोता लिखती हूँ कि आज के दौर में रिश्तों रक्त संबंध से ज्यादा दोस्तों का करीब होना एक आम हकीकत बन गया है। इसके पीछे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कई कारण हैं। यहाँ कुछ मुख्य वजह हैं, क्योंकि दोस्त अक्सर परिवार से ज्यादा करीब होते हैं, बिना शर्त स्वीकृति के दोस्त हमें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, और रिश्तेदारी में अक्सर अपेक्षाएं, सामाजिक दबाव होता है, जबकि दोस्ती में हम अनौपचारिक रहते हैं, स्वैच्छिक संबंध होते हैं, परिवार हमें मिलता है लेकिन दोस्त हम खुद बनाते हैं। ये चुनाव हमारी रुचियों, विचारों और मूल्यों की समानता पर आधारित होता है, जिससे जुड़ाव गहरा होता है और भावनात्मक सुरक्षा भी रहती है।
0: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि रिश्तों से ज्यादा करीबी की बात हो तो सबसे पहले मित्र ही आएगा, क्योंकि कई बार दोस्ती खून के रिश्तों से ज्यादा करीब और गहरी होती है, जो जीवन के हर सुख दुख की घड़ी में परिवार की तरह साथ खड़े होते हैं। दोस्त वो भाई बहन होते हैं जिसे हम खुद को चुनने का मौका मिलता है, जो रिश्तेदार से ज्यादा असरदार होता है। इसमें शुक्रिया या सॉरी की औपचारिकता नहीं होती, जबकि बेहद अनौपचारिक और सुकून देने वाली होती है। ये भी कहा जाता है कि रिश्ते बहुत मिलते हैं, पर सच्चे दोस्त बहुत कम मिलते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत कम मिलते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत खुश नसीब होते हैं वो जिन्हें सच्चे दोस्त मिलते हैं, है ना। और कहें तो एक गाना सुनवाएं पहले।
2: શું તમે જાણો છો કે સરકારશ્રીની વ્યાજબી ભાવની દુકાનથી અંત્યોદય રાશન કાર્ડ ધારકો અને અગ્રતા ધરાવતા કુટુંબોને મળવાપાત્ર અનાજ બાબતે સંબંધિત જિલ્લા નિવાસી અધિક કલેક્ટર

0: तो
1: हाँ तो
0: देखिए,
1: मंजरी बताइए, दोस्ती
0: हमारे
1: में और क्या क्या होता है?
0: दोस्ती में बहुत सारी बातें होती हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, और कभी कभी एक साथ घूमने भी जाते हैं तो दोस्तों के साथ बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपस में खर्चे भी शेयर कर लेते हैं, है ना।
1: मतलब दोस्ती में भी हम खर्चा देखते
0: भाई
1: हैं?
0: देखते
1: मुझे
0: हैं
1: ये
0: ना,
1: लगता
0: लेकिन
1: है
0: चलो
1: दोस्ती में हम खर्चा देखते ही
0: नहीं,
1: नहीं है।
0: आजकल दोस्तों में क्या होता है कि चल थोड़ा तू लगा थोड़ा मैं लगा, ऐसा करते हैं और खूब इंजॉय कर लेते
1: दे, मैं तुम्हारे
0: हैं।
1: साथ जाऊंगी तो मैं तो बिल्कुल शेयर नहीं करने वाली हूँ, तुम्हें सारा खर्चा करना पड़ेगा।
0: देखती हूँ। चलिए ठीक
1: हाँ
0: है, कर लेंगे।
1: हाँ
0: और हमारे साथी लिखते हैं, रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह। मुझे लगता है कि दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों की अपनी अपनी जगह है, और दोनों को बनाए रखना जरूरी है। दोस्ती में विश्वास और समझ होती है, जबकि रिश्तेदारी में प्यार और बंधन होता है।
1: ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, रिश्तेदारी में भी कई लोग हमें बहुत अच्छे मिलते हैं
0: जी
1: जिनसे बहुत लंबे समय तक हमारा नाता जुड़ा होता है। एक हमारे दोस्त लिख रहे हैं कि रिश्ते हमारे जीवन की जड़ें हैं, वे हमें आधार देते हैं, लेकिन मित्रता उस ठंडी छांव की तरह है जो सफर की थकान मिटा देती है। मित्र करीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके साथ हम होते हैं। रिश्तों में हम बंधे होते हैं पर मित्रता में हम मुक्त होते हैं, और मनुष्य का स्वभाव है कि वो वहीं सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है जहाँ वो पूरी तरह स्वतंत्र हो। शायद इसलिए कहा गया है कि एक सच्चा मित्र ईश्वर का वो तरीका है जिसमें वो बताता है कि वो हमारी कितनी परवाह करता है।
0: बहुत सुंदर सी बात लिखी है। और ऐसे ही हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का विषय बहुत ही सुंदर है। मुझे लगता है कि मित्र हमारे जीवन के वो चुने हुए रिश्ते हैं जो जहां दिखावे की जरूरत नहीं होती। रिश्तों में हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं, लेकिन मित्रों के साथ हम अपनी रूह से जुड़े होते हैं। एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी खामोशी को भी शब्दों से ज्यादा बेहतर समझ ले, शायद इसीलिए वो रिश्तों से भी ज्यादा करीब महसूस होते हैं। बहुत सुंदर
1: बिल्कुल
0: बात
1: सही।
0: है।
1: और एक आखिरी हम और ले लेते हैं, उसके बाद एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए। लिखते हैं कि पारिवारिक रिश्तों में अक्सर एक मर्यादा और अपेक्षाओं का बोझ होता है, वहां गलतियों पर टोकने या उपदेश देने का डर रहता है।

0: लेकिन एक सच्चे मित्र के सामने हम अपनी कमियों और गलतियों को बिना किसी डर के रख सकते हैं। मित्रता में जज किए जाने का डर कम और स्वीकार किए जाने का एहसास ज्यादा होता है।
1: जी,
0: है ना,
1: बिल्कुल सही बात लिखी है। तो हम लोग सुनते हैं,
0: हमारे दोस्त भी चाहेंगे कि हम उन्हें गीत सुनवा लें।

0: तो मंजरी भाई, ये तो बातें हो गई हैं दोस्ती की बातें, कि दोस्त तो सबसे प्यारा होता ही है, और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ताउम्र के लिए दोस्त मिलता है। तो दोस्त के साथ साथ अगर जब हम कुछ मिल बैठकर खाते हैं तो कितना मजा आता है,
1: बहुत
0: है ना?
1: अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जो व्यंजन है हमारे, दाल पीठा और सत्तू का।

0: शरबत। तो
1: जी
0: हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, हम उन्हीं के कमेंट्स को लेते हैं। एक लिखते हैं कि दाल पीठा जिसे फरा यूपी में से पनगोजा बोलते हैं, गेहूं के आटे में भी बनती है लेकिन इसका असली स्वाद चावल के आटे में मिलता है, जिसमें चना उड़द की दाल को भिगोकर लहसुन मिर्च के साथ पीस कर नमक मिलाकर गर्म पानी से गूथा हुआ चावल के आटे में भरा जाता है, फिर इसे उबलते पानी में पकाते हैं, इसे धनिया टमाटर मूली की चटनी के साथ खाते हैं, या फिर इसके टुकड़े करके कढ़ाई में तेल या घी में हरी मिर्च राई का तड़का देकर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, खाते हैं। अपने स्वाद के अनुसार लोग इसमें भुने आलू का भरावन, चटपटी मसालेदार भुनी अलसी, तिल का स्टफिंग भी करके पीठा बनाते हैं, जो भरकर स्टफ करके बना हुआ पीठा और जो दाल में पका वो दाल पीठी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग फरा तो बनाते ही हैं चने की दाल से, तो इसी तरह का है, बहुत अच्छा व्यंजन है। और हमारे साथी लिखते हैं कि आप कुछ पढ़ने वाली थी ना,
1: नहीं आप पढ़िए ना क्या कह
0: लिखते
1: रही
0: हैं कि
1: हैं।
0: सत्तू और सतुई दोनों अलग अलग होते हैं। सत्तू दो तीन तरह के अनाज उसमें मिले रहते हैं, जिसमें चना मसूर मक्का जौ होता है, जिसे लोग खाते हैं। सत्तुई यह सिर्फ भुने चने का बनता है जो शरबत में प्रयोग होता है, यानी सत्तू और सतुई। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है, जो हमें पता चल गया कि हम
1: दोनों
0: किससे
1: में क्या फर्क
0: क्या
1: होता
0: फर्क
1: है।
0: होता है।
1: हाँ, जो मैं पढ़ने वाली थी वो ये कि एक मेरे साथी ने लिखा है, बिल्कुल मेरे मन की बात लिख दी है,
0: जी
1: कि बिहार की व्यंजन दाल पीठा सत्तू का शरबत, अब तो भूख लग गई।
0: क्या बात है। यानी आप इतने से ही निकल ली
1: तो
0: जी
1: अगली बार, आप मेरी अच्छी दोस्त है ना,
0: जी
1: तो अगली बार आप ये सत्तू और सतुई बनाकर लेकर आने वाली हैं।
0: पक्का।
1: ठीक है, तो अब सुन लेते हैं गीत।

0: तो मंजरी कार्यक्रम सखी सहेली का वक्त अब पूरा हो रहा है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा लेते हैं विदा। तो सभी को मेरा
0: प्यार भरा नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपी को। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार राजेंद्र जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया।
0: हम अपने सुनने वालों को शुरुआत में बताना जरूरी समझते हैं कि आज की हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। तो शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं, कई बार हम अस्पतालों में देखते हैं किसी दंपत्ति के साथ कोई बच्चा होता है और बहुत बीमार सा और चेहरे पे बिल्कुल नूर नहीं, जैसे खून की कमी हो, इस तरह के कोई बच्चे दिखाई देते हैं तो हम पूछते हैं क्या हो गया है, तो बोले ये थैलेसीमिया का मरीज है। तो सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को बहुत ही संक्षेप में और सरल जानकारी के रूप में आप बताइए कि थैलेसीमिया बीमारी का इतिहास क्या है और इसके बारे में गहराई से लोग क्या समझते हैं और दरअसल ये क्या है।
1: थैलेसीमिया एक रक्त की बीमारी है जो आनुवंशिक रीतिया संक्रमित होती है आगे चल के, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चलते ही रहती है। अगर हम देखेंगे तो इतिहास जो होता है, देखिए कि बहुत सारी बीमारियां पहले से हैं पर हमें वो कभी ज्ञात हुई, यह ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये वर्ड थैलेसीमिया कहाँ से आया? वर्ड थैलेसीमिया में दो अलग अलग वर्ड है। थैलेस ये ग्रीक वर्ड है और एमिया एक इंग्लिश वर्ड है। तो थैलेस का मतलब होता है समंदर के आजू बाजू
0: जी।
1: तो ये बीमारी जब देखी गई, ये भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं उसी के आजू बाजू में पाई गई, और एमिया मतलब खून की बीमारियां। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज जो भूमध्य सागर के आजू बाजू में कंट्रीज थी इसमें ये पाई गई, लेकिन इसके सिवा भी ये बीमारियां पाई गई थी। 1938 में डॉक्टर मुखर्जी करके एक भारतीय शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने इस बीमारी का विवरण किया था कलकत्ता में छठे दशक में 1954 में, जब ये बीमारी पूरी तरह से जानी गई। ये बीमारी दो तरीके की होती है, एक तो होती है अल्फा थैलेसीमिया जिसमें अपने हीमोग्लोबिन का अल्फा चरण खराब होता है, या तो बीटा थैलेसीमिया जिसमें तो बीटा चरण खराब होता है। तो धीरे धीरे इस बीमारी के बारे में जैसे अपना ज्ञान बढ़ते गया और उसी हिसाब से फिर उसमें संशोधन भी चलते चला गया है। तो इस बीमारी का इतिहास ऐसा है कि जो नाम जब भी पड़ा था तो वो भूमध्य समुद्र की वजह से पड़ा था, लेकिन ये बीमारी पूरे दुनिया में पाई जाती है। अगर भारत के इतिहास के बारे में हम लोग बात करें तो भारत में कुछ कुछ जगह पर ये बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है। सिंध प्रांत है और जो पंजाब प्रांत है वहां की जो जनता

0: भारत में स्थलांतरित माइग्रेट हुई थी पार्टीशन के बाद में, तो सिंधीज और पंजाबीज में ये बीमारी कॉमनली पाई जाती है नॉर्थ रीजन में, गुजरात में यही बीमारी पाई जाती है, महाराष्ट्र में, नॉर्थ कर्नाटका में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कुछ कुछ जगह पे ये बीमारी पाई जाती है। इंडिया के सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट में ये बीमारी इतनी ज्ञात नहीं थी। लेकिन
1: अच्छा, लेकिन मध्य भारत जो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है?
0: देखिए कैसे होता है कि ये जो बीमारी है अपने हीमोग्लोबिन यानी शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं है उससे निगड़ित होती है, तो मध्य भारत में इसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया है। मध्य भारत में सिकल सेल नाम की एक बीमारी होती है, ये बीमारी और थैलेसीमिया जब एक साथ आते हैं तो एक सिकल थैलेसीमिया नाम की नई बीमारी जन्म लेती है। आज के दौर में जहां पे माइग्रेशन इज वेरी कॉमन, हर जगह पे सब लोग अपने काम की वजह से या किसी और वजह से माइग्रेशन करते हैं और अलग अलग चले जाते हैं, इसलिए अभी उतना डिस्टिंक्शन नहीं रहा है इस बीमारी के बारे में।
1: डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया और भारत में इस बीमारी को अगर हम तौलें और एक अनुपात लगाएं तो क्या पाते हैं आप, कितना प्रभावित क्षेत्र पाया जाता है?
0: देखिए पूरी भारत दुनिया का हम लोग अगर ध्यान रखते हैं तो पूरी दुनिया में करीबन हर साल 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं जो है जो थैलेसीमिया मेजर बच्चे होते हैं, और इसमें भारत का है ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे हर साल। तो 10,000 बच्चे जो होते हैं हर साल थैलेसीमिया मेजर यानी पूरा थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं। लेकिन हम लोग जो कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिनन होता है कि जो ऊपर दिखता है उससे तो काफी गुना तो नीचे होता है पानी के। क्या होता है कि जो लोग होते हैं जिनमें थैलेसीमिया आधा ही होता है, जिसे हम लोग थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, इनका जो होते हैं इनको थैलेसीमिया कैरियर भी कहते हैं, इनकी अगर संख्या देखी जाए तो पूरे भारतवर्ष में हर 25 के पीछे एक थैलेसीमिया कैरियर होगा।
1: अच्छा,
0: तो इस तरह से ये बीमारी बढ़ती जाती है। अगर हर साल 10,000 से 12,000 बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर से और हर साल ऐसे ऐड हो जाते हैं, नॉर्मल रीता जो थैलेसीमिया का पूरी तरह से उपचार नहीं होने के कारण ये बच्चे उम्र के 15 से 20 साल में गुजर जाते हैं, तो भी हर वर्ष करीबन 1 से 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं इंडिया में।
1: देखा जाए तो ऊपरी तौर पर एक अनुपात बताया आपने, हम आगे बढ़ेंगे और थैलेसीमिया बीमारी का जो स्वरूप क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम चाहते हैं कि कोई संगीत की बात हो जाए, तो आप क्या सुनवाना पसंद करेंगे?
0: देखिए हिंदी संगीत तो जैसे श्रवणीय रहा है और आप जानते हैं पुराने दशक में जितने पुराने अच्छे गाने रहे, देवानंद जी उनमें से मेरे एक फेवरेट रहे हैं, तो उनका ही प्रेम पुजारी पिक्चर का फूलों के रंग से ये गाना मैं सुनना चाहूंगा।

0: बहुत ही अच्छा गाना सुनवाया आपने। वैसे ये बताइए, थैलेसीमिया जो ये बीमारी है, इसका मुख्य स्वरूप क्या होता है और इसके लक्षण क्या-क्या हैं?
1: देखिए, थैलेसीमिया जो बीमारी होती है, इसके जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया कि हर 25 इंसानों में एक इंसान कैरियर होता है। यह आज भारत की स्थिति है। जो कैरियर होता है उसे नॉर्मल तौर पे तो कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, पर अगर सही ढंग से देखा जाए तो इनका जो हीमोग्लोबिन होता है 7 से 13 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। इनमें थोड़ा सा सफेदपन आ जाना मुंह के ऊपर, थोड़ी सी ग्रोथ में कमी होना, या तो कभी हल्का सा पीलिया दिखना या हल्की सी कमजोरी मालूम पड़ना, ऐसे ही लक्षण पाए जाते हैं। अन्यथा इनमें कोई लक्षण की इतना अभाव ही रहता है। दूसरा जो होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, अभी ये जो होता है इसमें पूरी तरह से थैलेसीमिया तो नहीं आ जाता है। ये जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है। मुख्यतः जो मुंह के बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, वो काफी बढ़ जाती है, जिससे
0: अच्छा,
1: इनका जो शरीर में, अब सर देखेंगे तो बाकी धड़ से वो अलग लगता है कि काफी बड़ा दिखता है। दांत अलग अलग हो सकते हैं, मतलब दांतों में कुछ कमियां आ सकती है इन बच्चों में, और इनमें पीलिया भी दिखाई दे सकता है। इन बच्चों को हमेशा तो नहीं, पर बीच बीच में रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। सबसे डरावना इसमें जो है वो है तो थैलेसीमिया मेजर, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें पूर्णतः थैलेसीमिया बीमारी आती है। यह बच्चे उनके उम्र के 3 से 6 महीने से बाहर के रक्त के संक्रमण के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर इनको ये रक्त नहीं दिया गया तो ये जानलेवा हो सकता है कि इनके इसमें रक्त बनने की पूरी प्रणाली खराब हो गई होती है,
0: जो मेजर होता है।
1: जो थैलेसीमिया मेजर कहते हैं हम इसे। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे उम्र के 3 से 6 महीने में ही सफेद दिखने लगते हैं। माए देखती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कंटिन्यूअसली रोते रहता है, तो उसी की वजह से दिखाए जाते हैं। जब बच्चे का रक्त परीक्षण करते हैं तो हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, और जब आगे जाके हम लोग फर्दर टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं, अगर आप उनको ढंग से रक्त संक्रमण ना दे तो अपने शरीर में जो रक्त बनाने वाली हड्डियां होती है, बचपन में मेनली होती है अपनी सर की हड्डियां, ये बढ़ने लगती है साइज में, और वो अपने बाकी धड़ से अलग दिखने लगती है। इनका सर बड़ा होने लगता है, आंखें छोटी होती है, नाक अंदर चला जाता है, दांत खराब होने लगते हैं। तो इस तरह से अपने सर की हड्डियों पे इनका एक असर होने लगता है।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जिसे आप बता रहे हैं कि मेजर थैलेसीमिया, और बात आपने शुरू में की थी कि माइनर भी होता है, तो क्या दो ही प्रकार के थैलेसीमिया पाए जाते हैं?
1: देखिए, अल्फा थैलेसीमिया जो होता है ये भारत में इतना पाया नहीं जाता है। ये जो दिखता है मेनली अरब रीजन में देखा जाता है। अल्फा थैलेसीमिया इंडिया के पॉपुलेशन में तभी प्रॉब्लमेटिक होता है जब सिकल सेल या किसी अन्य बीमारी के साथ में वो जुड़ जाता है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है भारत में इतना मुख्य कारण नहीं है जितना है कि बीटा थैलेसीमिया।
0: बीटा,
1: हम लोग जो आज बात कर रहे हैं मेनली वो बीटा थैलेसीमिया के बारे में है, तो वही मैं बताना चाहता हूं कि बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होता है, या हम लोग जिसे ट्रेट कहते हैं या कैरियर स्टेज कहते हैं, इसमें उस व्यक्ति को विशेष तकलीफ तो नहीं होती है, पर किसी ठराविक अवस्था में, जैसे कि शरीर में लोहों की कमी हो गई या किसी और चीज की कमी हो गई, तो उसका हीमोग्लोबिन धड़ाधड़ नीचे आने लगना ही लगता है। दूसरी जो व्यवस्था होती है, जो हमने बताया कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है, जिसमें थैलेसीमिया के साथ और कोई बीमारी जुड़ने की वजह से या किसी वजह से व्यक्ति को बीच बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमेशा तो नहीं पड़ती है। और तीसरा जो बताया मैंने, जो थैलेसीमिया मेजर जो होता है, उसमें हर महीने या कभी कभी 3 से 4 हफ्ते में ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है।
0: ये भी होता है कि साथ में एनीमिक होने के साथ में वो थका हुआ सा दिखता है बच्चा?
1: हाँ, मतलब वही होता है कि जो बच्चा थका हुआ सा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, उसकी जो बढ़त होती है वो नॉर्मल बच्चों से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है, तो ये अलग अलग लक्षण दिखते हैं। बच्चे में पीलिया दिखता है, जो बच्चे थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया इंटरमीडिया से प्रभावित होते हैं उनमें लीवर और प्लिया यानी स्प्लीन की साइज भी बढ़ जाती है। कभी कभी उसकी वजह से पेट दर्द

0: पेट में गांठ लगना, ऐसे भी लक्षण पाए जाते हैं।
1: जैसे आपने ये भी बताया तो यहाँ जिक्र करना होगा दोस्तों आपके लिए कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि सर कुछ ज्यादा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि अनुपात में शरीर सिकड़ा हुआ होता है और पेट निकला हुआ सा दिखाई देता है।
0: अब देखेंगे ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको ढंग से रंग संक्रमण नहीं मिला होता है और ढंग से उनका उपचार नहीं चल रहा होता है, या तो इस बीमारी को ना जानने के कारण या तो किसी अलग विषय जैसे कि फैमिली गरीब हो और वो ढंग से इसका इलाज नहीं कर पा रही हो।
1: अच्छा, इसके कारण पे यदि हम जाएं मूल रूप से इसका रीजन जो है कि भाई क्यों होता है, तो अक्सर पारंपरिक रूप से लोग ये कह देते हैं भाई इनके माँ बाप को भी बीमारी थी, तो ये सत्य है कि अनुवांशिकता जैसे कि आपने कहा हेरिडेटरी कैरेक्टर होता है उसमें, तो माँ को होता है या पिता को होता है या दोनों को होता है।
0: इसमें अब भी देखिए ये जरूरी है कि जैसे हम लोग जेनेटिक्स या आनुवंशिकता जो कहते हैं ये माँ और पिताजी दोनों से ही आती है। ये जो बीमारी है मूल रूप से आधी बीमारी पिताजी से और आधी बीमारी माँ से आती है। कैसे होता है कि बहुत बार मुझे पेरेंट्स कहते हैं, मतलब माँ पिता कहते हैं, हमारे तो पूरे खानदान में ये बीमारी किसी को नहीं थी और हमारे बच्चे को ऐसे आ गई। अभी ऐसे है कि जो थैलेसीमिया माइनर यानी कैरियर स्टेट होता है वो बहुत बार पता ही नहीं चलता है, तो उनमें तो ये आधी बीमारी होती है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग बनाएंगे कि माँ के जीन्स के दो सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, पापा के दो जीन्स के सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, तो 50-50% बीमारी पापा और मम्मी दोनों में है। अब बच्चे जो पैदा होंगे उसमें तो उसमें 25% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त होते हैं, 50% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया माइनर अपने माँ पिताजी से होंगे, पर अगर नॉर्मल हिस्सा दोनों साइड से आ गया तो वो नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है।
1: अच्छा,
0: तो माँ पिताजी अगर दोनों में ये बीमारी आधी आधी है तो 25% चांस है कि बच्चे को आगे चल के थैलेसीमिया मेजर बीमारी होती है। ये बीमारी इसीलिए माँ से और पिता से दोनों साइड से ही आती है। बहुत कम बार, मतलब लाखों में एक आध केस ऐसे होगा जिसमें सिर्फ माँ को या पिताजी को ही बीमारी है और जो माँ से या पिताजी से जो नॉर्मल जीन आ गया उसमें वो शांति रह गया और जो दो क्षतिग्रस्त जीन है वही चल गया तो बीमारी आती है। पर मुख्य रूप से माँ और पिताजी दोनों से ही आधी आधी बीमारी आके एक पूरी बीमारी तैयार होती है बच्चे में।
1: डॉक्टर साहब एक प्रश्न यहाँ पर उभरता है कि जैसे आपने बताया कि माता पिता दोनों को होती है और जीन्स में जेनेटिकली ये समावेश होता है गर्भ के दौरान। जैसे कई माँ बाप आते हैं मरीज को लेकर बच्चे के रूप में आपके सामने कि भाई हमारे बच्चे को ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन की क्या कंडीशन आप पाते हैं, कितना होना चाहिए, कैसे आपको पता चलता है कि वाकई थैलेसीमिया है?
0: क्या होता है कि जो शुरुआती जो हीमोग्लोबिन रहता है इसे हम लोग कहते हैं हमारी भाषा में HbF, यानी जो माँ के पेट में रहते वक्त जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा पैदा होते वक्त काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए तकलीफ नहीं होती है। 3 से 6 महीने में जो अपने युवा अवस्था का हीमोग्लोबिन है वो धीरे धीरे तैयार होने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। ये प्रक्रिया जब शुरू होती है तभी हीमोग्लोबिन नीचे चले जाने लगता है तो बच्चा सफ़ेद दिखने लगता है। जब भी हम लोग देखते हैं तो हर वक्त ये हीमोग्लोबिन जो होता है 10 से नीचे तक आ गया होता है। जब और कोई वजह नहीं दिखती है, जैसे कि ये उम्र में हीमोग्लोबिन होने के ज़्यादा कारण नहीं होते हैं अलग, अनलेस किसी को ब्लीडिंग या और किसी चीज़ की तकलीफ होती हो या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो। अगर हम लोग मैं अगर ऐसे 10 बच्चे ले लूँ तो 8 बच्चों में थैलेसीमिया यही कारण होगा, हीमोग्लोबिन कम होने का, और मेनली ये 10 से नीचे ही पाए जाते हैं।
1: अच्छा भाई, देखिए बहुत ही गहन जानकारी आपने दी है क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऐसा घटक है जो कि पता चलता है कि कमजोरी कितनी है और किस ढंग से इसका उपचार होगा। हम आगे बढ़ेंगे और वही हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना सुनवा दीजिए ताकि चर्चा फिर से जारी रहे।
0: देखिए धर्मेंद्र जी जो है वो हीमैन के रूप में जाने जाते हैं पर उनका कोई रोमांटिक भी हिस्सा मुझे पसंद है, वो है ब्लैकमेल पिक्चर का और गाना है पल पल दिल के पास।

0: डॉक्टर साहब, वाकई आपने गीत बहुत अच्छा सुनवाया। और बीमारी की बात चल रही दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। डॉक्टर साहब, यहाँ प्रश्न ये होगा कि इस बीमारी के उपचार के जो मुख्य मुख्य घटक होते हैं वो क्या हैं?
1: देखिए, कैसे होता है कि एक बार ये बीमारी आ गई बच्चे में तो इसे ठीक करने के उपचार बहुत ही कम अवेलेबल है आज की तारीख में। इन बच्चों का मुख्य जो इलाज होता है वो तो रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि इनमें रक्त बनने की प्रणाली अब बंद पड़ चुकी है या गलत तरीके से काम कर रही है। इसकी वजह से क्या लगता है कि इनको हर महीने रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, और जो लाइफ लॉन्ग यानी जिंदगी भर चलते रहता है। मुख्य रूप से अगर आप देखा जाए तो रक्त एक लोह का मुख्य स्रोत होता है, रक्त में जो हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, या आयन का स्रोत होता है। तो क्या हो जाता है कि जब 20 से ऊपर ब्लड यूनिट ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं तो लोह की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। तो इसीलिए रक्त संक्रमण के साथ लोह कम करने के इंजेक्शंस या टैबलेट्स इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। तो रक्त संक्रमण और आयन चिलेशन यानी लोह कम करने की दवाइयाँ, ये एक सबसे मुख्य उपचार पद्धति है और यही कारगर करती है। कुछ कुछ दवाइयाँ भी अवेलेबल है इस चीज़ में, पर इतनी कारगर नहीं है। बीमारी को अगर मुख्य तरीके से ठीक करा जाए तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट यानी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये एक मुख्य ट्रीटमेंट है इसमें।
0: आपने बताया कि उसको एक अवधि के बाद बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो वो कितनी मात्रा में होता है और कितने महीने या दिनों के अंतराल के बाद उसको होना जरूरी होता है?
1: ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो हम लोग फ्रीक्वेंसी तय करते हैं वो होती है हीमोग्लोबिन की स्तर के ऊपर। यह हीमोग्लोबिन का स्तर बच्चों में हम लोग 9 से 10 के बीच में रखना पसंद करते हैं। वही वो जब बच्चा पूरा बड़ा हो जाता है 17-18 साल का, तो यही स्तर हम लोग 7 से 8 के बीच में रखना शुरुआत कर देते हैं। ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें यानी ब्लड चढ़ाने कितना जरूरी होता है,
0: कब
1: तो
0: कब?
1: शुरुआती जो होता है हर 3 से 4 हफ्ते में एक बार लगता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसका आकारमान भी बड़ा हो जाता है, उसका वजन बड़ा होता है, तो पहले जो सिर्फ 1 यूनिट हर महीने में लगता था, फिर हर महीने 2-2 यूनिट लगने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अब हम लोग बार बार जो ब्लड चढ़ाते हैं उसके वजह से ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यानी प्रतिजैविक तैयार हो जाते हैं ब्लड में, और जो बाहर से ब्लड दिया जाता है वो शरीर में टिकता नहीं है। इसलिए जब हम लोग दूसरे या तीसरे दशक में आते हैं इन पेशेंट्स के साथ में, तो ब्लड करीबन हर दूसरे हफ्ते में चढ़ाना पड़ना जरूरी हो जाता है। पर हीमोग्लोबिन का स्तर

0: यही ब्लड चढ़ाने की मुख्य फ्रीक्वेंसी तय करता है।
1: थैलेसीमिया जो बीमारी है डॉक्टर साहब, ये पीड़ित जो इससे बच्चे होते हैं उनकी आयु क्या होती है, और इसके उपचार में तकरीबन आप क्या सोचते हैं कितना खर्च आता है?
0: करीबन 5% बच्चे भी थैलेसीमिया के आइडियल तरीके से, यानी जो वैज्ञानिक रूप से जो उपचार है वो नहीं ले पाते हैं। इसका तो मुख्य कारण है इसमें लगने वाला खर्च। औसतम जो खर्च होता है, अगर बच्चे की उम्र 3 से 4 साल हो जाती है तो हर साल का खर्चा लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया होता है। इसमें जो इंक्लूड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके लिए बार बार हॉस्पिटल जाना, उसके लिए स्पेशल ब्लड सेट्स लगते हैं हम लोग जिसको फिल्टर्स कहते हैं, उनका खर्चा होता है, और शरीर में लोहे की मात्रा ज़्यादा रही रहे इसके लिए जो इंजेक्शंस या जो दवाई देनी पड़ती है उनकी मात्रा। तो ये जो मैंने बताया है उम्र के 4 साल तक, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे का वजन बढ़ने लगता है तो इन दवाइयों की जो मात्रा रहती है वो भी बढ़ने लगते हैं। हम लोगों ने एक अंदाजन किया था कि भारत में इन बच्चों पर कितना खर्चा हो सकता है, तो करीबन अगर ये बच्चा 20 साल तक जीता है तो उसके ऊपर तब तक 15 से 20 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं, और 50 साल तक अगर ये बच्चा जीता है तो उस पर करीबन 1 करोड़ रुपया तक का खर्चा हो सकता है। भारत में आइडियल यानी वैज्ञानिक रूप से सभी बच्चे नहीं मैनेज करने के ऊपर इन बच्चों की औसतम आयु 15 से 25 साल के बीच में होती है।
1: ये ब्लड बैंक से मुहैया करवाने की कोई व्यवस्था होती है या परिवार के किसी सदस्य को बार बार ब्लड देना होता है?
0: हर साल भारत में ही सिर्फ, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल में कितना ब्लड लग सकता है। और ब्लड देने की इससे भी ज्यादा अलग कारण होते हैं, जैसे ऑपरेशन के दौरान या किसी एक्सीडेंट के दौरान या किसी अलग वजह से ब्लड देना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि ब्लड की शॉर्टेज तो हमेशा होती है। जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में जाना गया तो भारत में कई सारे शहरों में कुछ संस्थाएं बनाई गई जो इन सब बच्चों को सपोर्ट करती है। तो ऐसे अलग अलग सोसाइटीज़ है, बम्बई में KEM अस्पताल में, JJ अस्पताल में, 80 के दशक में ये संस्थाएं बन चुकी है। थैलेसीमिया इंडिया सोसाइटी भी है, दिल्ली में एम्स में है, और काफ़ी सारे शहर में जैसे कलकत्ता, चेन्नई, हर जगह पे थैलेसीमिया सोसाइटी है। तो इनका मेंबर बन के आप ब्लड के लिए उनसे मदद की अपेक्षा कर सकते हैं। बार बार तो ब्लड देना जरूरी नहीं होता है वैसे, पर कभी कभार किसी रिश्तेदार को ब्लड देने की जरूरत पड़ सकती है।
1: ये तो बहुत उम्दा बात लाई आपने। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे इस संबंध में गीत के पहले कि कोई दवाइयाँ भी होंगी जो इस बीमारी में मदद कर सकती हैं इंजेक्शन वगैरह के अलावा?
0: एक दो दवाइयाँ इस बीमारी के लिए देखी गई थी, उन्होंने मुख्य रूप से बीमारी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। वीट ग्रास जैसे गवांकुर कहते हैं, इसका जूस पिला के कुछ कुछ लोगों ने देखा कि बच्चों में कुछ फायदा कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने पाया कि 25% बच्चों में रक्त संक्रमण की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगी, पर कुछ अन्य परीक्षण में यही वापस से ऑब्जर्वेशन नहीं देखा गया, इसलिए इसे तो रिकमेंड नहीं करते हैं। दूसरी चीज होती है एक हाइड्रोक्सी यूरिया करके दवा होती है, ये ओरली लेने वाली एक कैप्सूल होती है, इसे भी देखा गया है। इस बीमारी में ये दवा इस तरह से काम करती है कि जो अपना माँ के पेट में होते होने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसे हम लोग HbF कहते हैं, कि उसकी मात्रा खून में बढ़ाने की वजह से ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। पर मोटा मोटी तौर पे कोई भी दवा बाहर से इस बीमारी को ठीक करने में लाइलाजी रही है।
1: और यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो बातचीत बहुत भारी भारी सी वजनी सी लग रही है, खतरे की आगाह वाली बात कर रही है, तो माहौल को हल्का करते हैं आपकी पसंद का कोई गाना सुनकर।
0: तो रोजा फिल्म से एक जो गाना है भारत हमको जान से प्यारा है, ये मेरा एक और एक पसंदीदा सॉन्ग है जो भारत के विषय मेरा आदर हमेशा बढ़ाते रहता है।
2: શું તમે જાણો છો કે સરકારશ્રીની વ્યાજબી ભાવની દુકાનથી અંત્યોદય રાશન કાર્ડ ધારકો અને અગ્રતા ધરાવતા કુટુંબોને મળવાપાત્ર અનાજ બાબતે સંબંધિત જિલ્લા નિવાસી અધિક કલેક્ટરશ્રીને ફરિયાદ કરી શકાય છે? હવે તો માય રાશન મોબાઈલ એપ દ્વારા રાશન કાર્ડને લગતી વિવિધ માહિતી તેમજ મેળવેલા અનાજના જથ્થાની રસીદ મેળવી શકાય છે તથા ફરિયાદ નોંધાવી શકાય છે। અને જો આ અધિકારીઓના નિર્ણયથી સંતોષ ન થાય તો ગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગ ગાંધીનગરને સીધી અરજી કે અપીલ કરી ન્યાય મેળવી શકો છો। ફોન નંબર 079-232-58-490। શું તમે જાણો છો કે પીએમ પોષણ યોજના અંતર્ગત પ્રાથમિક શાળાના 6 થી 14 વર્ષના બાળકોને મળતા આહાર બાબતે સંબંધિત જિલ્લાના નિવાસી અધિક કલેક્ટરશ્રીને તેમજ આંગણવાડી કેન્દ્રોમાંથી 6 મહિનાથી 6 વર્ષ સુધીના બાળકોને, સગર્ભા મહિલાઓને તથા ધાત્રી માતાઓને મળતા આહાર બાબતે કોઈ ફરિયાદ હોય તો સંબંધિત જિલ્લા પંચાયતના ફરિયાદ નિવારણ અધિકારીશ્રીને અરજી કે ફરિયાદ કરી શકાય છે? અને જો આ અધિકારીઓના નિર્ણયથી સંતોષ ન થાય તો ગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગ ગાંધીનગરને સીધી અરજી કે અપીલ કરી ન્યાય મેળવી શકો છો। ફોન નંબર 079-232-58-490।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में बहुत ही इंस्पायर करने वाला रहा। इस बीमारी को ठीक करने के लिए और भी जो अल्टरनेटिव चीज़ें हैं, वो विकल्प क्या हैं आपकी नज़र में?
1: इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने का एक ही विकल्प है आज के तारीख में, वो तो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल देखा जाए तो ये अपने हर रक्त में होने वाली पेशी की जननी है, जैसे लाल रक्त पेशी, सफेद रक्त पेशी और प्लेटलेट। लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की होना जरूरी होता है। यह डोनर भाई बहन हो सकता है जिनमें शायद सिर्फ आधी बीमारी हो या जो पूर्णतः नॉर्मल हो, या माँ और पिताजी से स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं। इंटरनेशनल डोनर रजिस्ट्री से भी हो सकती है, तो वहाँ से भी स्टेम सेल लिया जा सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो उपचार पद्धति है, ये बहुत ही खर्चिक उपचार पद्धति है, उसमें जान का खतरा भी होता है। जिसमें सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट, यानी जब भाई बहन से हम लोग सेल्स लेते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए, तो भी वो पूरी तरह से मैच होना जरूरी होता है। जिससे अपने रक्त के ब्लड ग्रुप जैसे होते हैं ए बी या ओ, वैसे ही हमारे सफेद रक्त कोशिकाओं का ग्रुप होता है, जिसे हम लोग ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या HLA कहते हैं। इसके अलग अलग 10 रीजन्स होते हैं। ये 10 से 10 रीजन जब पूरी तरह से मैच करते हैं, जिसे हम लोग फुल मैच कहते हैं, तभी हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के आगे बढ़ते हैं। यह जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है, उसमें करीबन एक वक्त पे 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है,
0: ओहो,
1: और इसमें जान का खतरा 5 से 10% रहता है। दूसरा जो मैंने कहा, जिसमें माँ और पिताजी से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग उम्मीद रखते हैं, उसमें मैच होने का चांस एक आध ही होता है, 1 लाख में। तो उसमें भी जो खर्चा होता है सेम ही होता है, और हम लोगों ने हाफ मैच कभी कभी ट्रांसप्लांट कर दिया तो ये खर्चा 15 से 20 लाख तक हो जाता है, पर जान का खतरा 10 से 20% बना ही रहता है। और जो हम लोग अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट, जो मैंने आपको बात बताई थी, जहां पे आप बाहर के किसी डोनर रजिस्ट्री से सेल्स वगैरह अगर मंगवाते हैं, तो यही खर्चा 35 से 50 लाख के बीच में हो सकता है, और इसमें जान का खतरा 20 से 30% होता है। तो ये सारे ही बहुत ही खर्चिक उपाय हैं। तो इसीलिए, पर ये छोड़ के आज की तारीख में इस बीमारी के रुग्णों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कोई भी उपचार पद्धति अवेलेबल नहीं है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप नई पेशी बनाने वाली एक सिस्टम लेके आते हो। तो जब हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं और ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऐसे बच्चे रक्त संक्रमण से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है।
0: अच्छा, यदि सक्सेसफुल हो गया तो?
1: यदि सक्सेसफुल हो गया तो।
0: लेकिन इसी पूरी प्रक्रिया में इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को और उसके परिवार को तमाम तकलीफों का सामना भी करना पड़ता होगा।
1: बहुत सारी तकलीफें होती है। समझ लीजिए कि आपके पास ऐसा बच्चा है, इसे आपको कम से कम महीने में एक बार तो अस्पताल लेके जाना है। अब जब अस्पताल लेके जाना है, तो जो लेके जाने वाला है उसे अपने भी काम से छुट्टी लेनी होती है। घर पे बाकी के अगर बच्चे बाकी की चीजों के ऊपर है, तो उस पर भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर महीने महीने तो शुरुआत में लगता है, बाद बाद में तो हर 2-3 हफ्ते में लगता है, तो आपके हॉस्पिटल जाने की फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दूसरी चीज होती है कि देखिए, ब्लड संक्रमण तो हो गया किस्सा, जो 1990 के दशक से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गए, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे या ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, तभी तो उन बच्चों को HIV, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी जैसे भी इन्फेक्शन का संक्रमण हो गया है, उसका इलाज और उसकी तकलीफें तो अलग से रही है। 90s के बाद ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट होने की वजह से इन बीमारियों का संक्रमण तो काफी मात्रा में कम हुआ है। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जैसे HIV जैसी बीमारियां है, इनमें एक विंडो पीरियड होता है जिसमें ये बीमारी ब्लड में नहीं पाई जाती है, पर होती है वहां पे, तो इस तरह से उनका संक्रमण हो जाता है।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। अब सुनिए समीर का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है अनु मलिक ने, आवाजें सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की। फिल्म है बादल।

आ गले लग जा। अब सुनिए इस फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को साहिर लुधियानवी के लिए इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक

0: मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ शेर चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सांभळी रह्या छो आकाशवाणी विविध भारती नुं सूरत केन्द्र 101.1 FM। सांजना 6:05 थई छे। समय थई रह्यो छे कार्यक्रम गुजरा हुआ जमाना माणवानो। आ दिल मंसूरीनी आ रचना साथे आपनी रेडियो फ्रिन्सीमां कार्यक्रमनी शरूआत करी रही छे। शून्यतामां पानखर फरती रही, शून्यतामां पानखर फरती रही, पांदड़ीઓ આભથી ખરતી રહી, ને પવનનું વસ્ત્ર ભીનું થઈ ગયું, ને પવનનું વસ્ત્ર ભીનું થઈ ગયું, ચાંદનીની આંખ નીતરતી રહી, સૂર્ય સંકોચાઈને સપનું બન્યું કે વીર

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। अब सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही पलों में 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन।

सात बजे फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम होगा। स्मृतियों के स्वर ये कार्यक्रम सुनेगा शाम 7:45 पर, जिसमें सेवानिवृत्त सहायक निदेशक दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। रात 8 बजे हवा महल में लेखिका और निर्देशिका दुर्गा मेहरोत्रा की लिखी नाटिका सुनवाई जाएगी आंगन में स्वर्ग। चित्रलोक कार्यक्रम आप रोजाना सुनते हैं सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम सुनेगा रात 9 बजे। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। रात 9:30 इसका समय होगा। 10 बजे छाया गीत और रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात। ये थे आज के कार्यक्रम। अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। जागो सुबह हो गई ये कार्यक्रम आप रोजाना सुनते हैं सुबह 5 बजे। संगीत सरता कार्यक्रम होता है सुबह और शाम 6:45 पर। कल आप सुनेंगे नई श्रृंखला ऐसी लागी लगन का पहला भाग। कलाकार होंगे गायक अनूप जलोटा, प्रस्तुति मनीषा जैन की। 7 बजे आप सुनेंगे पुरानी फिल्मी गाने, कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। त्रिवेणी का प्रसारण समय रहेगा सुबह और दोपहर 2 बजे। आज के फनकार कल ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता महिपाल पर। समय होगा सुबह और रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा में सेहतनामा के अंतर्गत डॉक्टर आशय प्रमोद करपे से राजेंद्र पाठी की बातचीत प्रसारित की जाएगी। विषय होगा थैलेसीमिया की बीमारी। 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम होगा। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:05 पर। सुरीला सफर लेकर आएंगे दोपहर 1 बजे। सदाबहार नगमे सुनेगा 2:30 पर और सखी सहेली का समय होगा दोपहर 3 बजे। शाम 4 बजे पिटारा में सेलुलॉइड के सितारे के अंतर्गत अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी। छाया गीत का समय होगा शाम 5 बजे और तराने नए पुराने शाम 5:30 पर। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस प्रसारित किया जाएगा। रात 8 बजे हवा महल में मदन मोहन खन्ना की लिखी झलकी सुनवाई जाएगी विश्व प्रेमी सम्मेलन। अभी आप हमारे आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे।

0: ये कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर मंगलवार और शुक्रवार दोपहर 3 बजे जरूर सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, जिसके प्रथम भाग के प्रायोजक है
4: सुबह जराओ, शाम जराओ।
5: શું તમે જાણો છો કે સરકારશ્રીની વ્યાજબી ભાવની દુકાનથી અંત્યોદય રાશન કાર્ડ ધારકો અને અગ્રતા ધરાવતા કુટુંબોને મળવાપાત્ર અનાજ બાબતે સંબંધિત જિલ્લા નિવાસી અધિક કલેક્ટરશ્રીને ફરિયાદ કરી શકાય છે? હવે તો માય રાશન મોબાઈલ એપ દ્વારા

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। जयमाला कार्यक्रम में आप सभी फौजी साथियों का स्वागत है।

0: शंकर महादेवन, सोनू निगम और हरिहरन को फिल्म लक्ष्मी सुना। संगीत शंकर ईशान लॉय का था, बोल जावेद अख्तर के। लीजिए सुनिए भारतीय सेना पर आधारित गीत, गीतकार संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर के।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेना।
1: अभी आपने भारतीय सेना पर आधारित गीत सुना। गीतकार, संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर के थे। लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू को फिल्म रंग में, गीतकार समीर और सुरिंदर साथी, संगीतकार नदीम श्रवण।

अभी आपने कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म रंग में सुना, अब अलका याग्निक को सुनिए हरिहरन के साथ खामोशी द म्यूजिकल फिल्म में। बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत जतन ललित का।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: इस समय फौजी भाई सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम। लीजिए सुनिए कुमार सानू को फिल्म परदेश में। तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम के आगे जो गीत होंगे वो इस अंतराल के बाद।
1: उफ, आ मैं महीनो असह्य गर्मी नो महीनो एसी कूलर नो वपराश वधी जाए तो तेनी सामे लाइट बिल मा पण वधारो ज वधारो। अरे फरियाद शाना माटे करो छो? आ फरियाद नो एक ज उपाय, आजे ज घरे सौर ऊर्जा लगाओ ने मेळवो वीज बिल मा राहत ज राहत। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मा आ योजना अंतर्गत दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड उजवी रही छे मे महीनो सौर ऊर्जा नो महीनो। तो आजे ज घरे सौर ऊर्जा लगाओ ने बनाओ मे महीना ने ठंडक नो महीनो। आ योजना अंतर्गत मळशे 78,000 सुधी सब्सिडी, बाकी नो खर्च फक्त 4-5 वर्ष मा वसूल। उपरांत रूफटॉप नु लांबू आयुष्य, मिनिमम मेंटेनेंस, मोटी बचत, पर्यावरण ने अनुरूप ऊर्जा नो स्रोत पण खरो। तो सौर ऊर्जा लगाओ अने वीज बिल मा राहत मेळो। वधु जानकारी माटे टोल फ्री नंबर 19123 पर संपर्क करो।
2: हर मंगलवार और शुक्रवार दोपहर 3 बजे जरूर सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, जिसके प्रथम भाग के प्रायोजक है
3: सुबह जराओ शाम जराओ
4: जी दर्शन थू।
0: आप सुन रहे कुमार सानू को आपके साथ साथ देंगी साधना सरगम। फिल्म है दीवाना, नदीम शवन के संगीतबद्ध के इस गीत की धुन, किस गीत को लिखा है समीर ने।

0: ये थे कुमार सानू और साधना सरगम फिल्म दीवाना में। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: स्मृतियों के स्वर। स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए सेवानिवृत्त सहायक निदेशक श्री दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: दिलीप साहब,

0: आज क्या ऐसे इंजीनियर्स हैं पूरी जिजीविषा के साथ एक नई जो आकाशवाणी की टेक्नोलॉजी आई है उसमें काम कर रहे हैं?
1: जी, ये टेक्नोलॉजी में तो सब माहिर हो गए अभी। टेक्नोलॉजी तो उन्होंने अपडेट कर दिया है, अभी नए बच्चे भी आ गए हैं, वो भी अभी नए टेक्नोलॉजी के साथ मिल गए हैं उनको। मैंने उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जो 90s का जो प्रवास है अपना
0: अच्छा,
1: आकाशवाणी का,
0: आकाशवाणी का
1: हाँ,
0: जी।
1: उसकी वीडियो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी।
0: हाँ
1: उसमें
0: हाँ
1: ये सारी बातें मैंने रखी थी उसमें, और वो डॉक्यूमेंट्री रंगा भवन में आकाशवाणी दिल्ली के वहाँ दिखाई गई थी। ऑनरेबल मिनिस्टर भी वहाँ थे,
0: जी
1: उन्होंने मुझे फेलिसिटेट भी किया था वो
0: जी
1: डॉक्यूमेंट्री के लिए। और टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया, जब टेप से चालू हो गया, वॉल मशीन चालू हो गया, आज डिजिटल तक आ गए ये
0: जी
1: सारे।
0: जी
1: इसमें इंटरेस्ट जो लेता है ना, वो आगे बढ़ता है। जैसे अभी आज का माहौल है, डिजिटल युग का ऐसा माहौल है कि आप इंजीनियर तो इंजीनियर का काम करो, प्रोग्राम है तो प्रोग्राम का काम
0: जी
1: करो, ऐसी
0: जी
1: अभी बातें रही नहीं। हर
0: हाँ
1: एक को हर एक काम करना है
0: जी
1: तो ही आगे बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। कोविड टाइम में सारे आकाशवाणी स्टेशन विविध भारती ले रहे थे, स्टाफ का प्रॉब्लम था वहाँ पे। यहाँ 24/7 यहाँ काम किया है मैंने, खाना खाने के भी घर नहीं जाता था। ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि जिसने पहला वैक्सीन ढूंढ के निकाला था कोविड का, वो एक साइंटिस्ट थी, मुंबई के लग के जो वसई गांव है वहाँ की थी। उनके गांव में उसका नाम लिखा था, एक बैनर लगाया था, एक साइंटिस्ट ने एक वैक्सीन ढूंढ निकाला। एक जो हमारा कलीग था, उसके स्टेटस में उसने लगाया था वो बैनर। तो मैंने उसको फ़ोन किया, ये साइंटिस्ट है, उसका नंबर मिलेगा क्या? वो US में थी, अमेरिका में थी।
0: जी
1: तो उसने मुझे नंबर ढूंढ के दिया, फिर मैंने उसको कांटेक्ट किया, और फिर उसका एक रिकॉर्डिंग किया यहाँ। जिसने पहले वैक्सीन निकाला, जो टीम में थी, साइंटिस्ट के टीम में थी, उसका एक रिकॉर्डिंग यहाँ विद भारती में हो गया था
0: जी जी
1: कोविड के टाइम में। वो सारे व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग की थी वो सारी।
0: अच्छा हाँ
1: फिर कुछ स्टूडेंट थे, कोई US में था, कोई जर्मनी में था, कोई जापान में था, वो फंस गए थे, उनकी रिकॉर्डिंग की थी। एक रिकॉर्डिंग मेरी फैमिली की याद है, वो उनके जो पिता थे वो लड़की के, वो श्रीलंका में फंस गए थे, उसकी माँ गोवा के पास एक गांव है वहाँ फंस गई थी, और ये लड़की यहाँ मुंबई में थी। तो तीनों को एक दूसरे से कांटेक्ट सिर्फ फ़ोन से होता था,
0: बहुत बड़ी बात।
1: और 2 महीना पूरा लॉकडाउन था। ग्रुप रिकॉर्डिंग की थी
0: जी
1: फिर
0: जी जी ये बहुत
1: और
0: ही अभूतपूर्व प्रयास
1: जी
0: रहे होंगे
1: जी
0: उस समय कोविड काल में,
1: कोविड
0: जब
1: काल
0: हम
1: में
0: बुला भी नहीं सकते थे और जा भी नहीं सकते थे। उस स्थिति में आपने उन लोगों को रेडियो के माध्यम से रूबरू करवाया, आपस में मिलवाया, बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी तकनीकी विभाग के एक इंजीनियर के रूप में।
1: जी हाँ, तकनीकी और प्रोग्राम ऐसा कुछ हो ही नहीं, होता ही
0: हाँ,
1: नहीं
0: ये
1: है।
0: सबसे बड़ी
1: हाँ, ये
0: भावना
1: सब
0: है कि हम जो है एक परिवार के सदस्य
1: परिवार
0: हैं, और चाहे हम कार्यक्रम में का विभाग में हैं और चाहे तकनीकी विभाग में, काम हमें ही सब करने
1: जी।
0: हैं।
1: जैसे हमने गोल्डन जुबली किया था, 60 साल पूरे हुए थे विविध भारती के, तभी एक थीम थी विविध भारती की, जल स्थल और वायु। तो उसमें हमने नेवी, BSF और एयरफोर्स की रिकॉर्डिंग की थी। हम विक्रांत पे गए थे, जो पुरानी
0: अच्छा
1: विक्रांत
0: जी
1: थी
0: जी
1: वहाँ जाके रिकॉर्डिंग की थी नेवी की। फिर जोधपुर गए थे, जैसलमेर गए थे,
0: जी
1: वहाँ BSF की रिकॉर्डिंग की थी। बनारस और प्रयागराज, वहाँ हमने एयरफोर्स की रिकॉर्डिंग की थी। वो जा वहाँ भी ऐसी रिकॉर्डिंग में बहुत दिक्कतें आती थी, कभी कभी मशीन वहाँ की नहीं चलती थी।
0: हाँ
1: तो हमने वहाँ भी कुछ जुगाड़ करके, देसी जुगाड़ करके हमने रिकॉर्डिंग की थी वो
0: जी,
1: टाइम की। वो टाइम के तो किस्से अलग ही
0: मतलब
1: है, तुम
0: शो मस्ट गो ऑन,
1: हाँ या
0: है ना, वो चलते
1: वो तो
0: रहना
1: चलता ही
0: चाहिए
1: रहना
0: किसी भी तरह से हो।
1: है। एक मैंने प्रोग्राम किया था आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम फिल्म डिवीजन गए थे और वहाँ से वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज लेके आए थे। हमारे साथ हेड ऑफ द प्रोग्राम रेणु जी भी थी, और उस वीडियो प्रोग्राम से हमने ऑडियो प्रोग्राम बनाए थे, रेडियो ड्रामा बनाया था, और वो बहुत लोकप्रिय भी हुआ था।
2: आकाशवाणी समाचार, रीटा दवे वांचे છે. સૌ પ્રથમ મુખ્ય સમાચાર. સોમનાથ અમૃત પર્વમાં સહભાગી થતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે સોમનાથ મંદિર આપણને યાદ અપાવે છે કે વારસો જળવાઈ રહે ત્યારે જ કોઈ દેશ અસ્તિત્વમાં રહી શકે. પ્રધાનમંત્રીએ ગુજરાતના વડોદરામાં રાજ્યના ત્રીજા સરદાર ધામનું લોકાર્પણ કર્યું. સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહે વધુ વિશ્વસનીય અને વૈવિધ્યસભર ઉર્જા સ્ત્રોતોને ઓળખવાની તાત્કાલિક જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 2.6% ઉછાળો. અને આઈપીએલ ક્રિકેટમાં આજે પંજાબ કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે મુકાબલો. સમાચાર વિગતવાર. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે આજે ભારત આત્મવિશ્વાસ સાથે આગળ વધી રહ્યું છે, તેમાં સાંસ્કૃતિક

दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटिका आंगन में स्वर्ग। लेखन और निर्देशन किया है दुर्गा मेहरोत्रा ने।

0: और सुनो आया, शीशी वाली दवाई चार चार घंटे पर देना, एक खुराक अभी दे देना, और पाउडर के लिए समझ गई ना?
1: जी हाँ।
0: वक्त से दे देना, अभी टेम्परेचर है उसे।
1: बहुत अच्छा बहू जी।
0: और बीच में एक बार बुखार भी देख लेना। ओफो, मर गए, आज भी देर हो गई। अभी तो शंटू मंटू को तैयार करना है, नहीं तो आया उसके साथ ही कहीं रह जाएगी। आया आया, जरा मेरी कलम में स्याही भर देना। ओफो, कहाँ रख दिया?
1: कौन सी बहू जी?
0: अरे भाई, धूप का चश्मा। हाँ, और सब ठीक से मेज पर लगा देना, दवा ठीक से दे देना।
1: जी जरूर। राजा भैया, देखो हम क्या लाए हैं, मीठा मीठा शरबत। मुँह खोलो तो।
2: सच्ची? देखे, झूठी नहीं तो, हम समझ गए दवाई है।
1: अच्छा लो, झट से मुँह खोलो। खोलो खोलो। ए आ, फिर बंद कर लिया। खोलो भैया।
2: हम दवाई नहीं पियेंगे।
1: पी लो भैया, नहीं तो देर हो जाएगी।
2: हो जाने दो, हम तो नहीं पियेंगे।
1: अरे रे, मुँह पर से चादर तो हटाओ।
2: तुम पहले दवा हटाओ।
1: अच्छा लो, ए ये दवा का गिलास यहाँ रख दिया।
2: अब ठीक।
1: लेकिन ये बताओ कि दवा नहीं पियोगे तो बुखार कैसे उतरेगा, और बुखार नहीं उतरेगा तो फिर कंधे पर बैठकर गुड़िया वाली नुमाइश कैसे चलोगे?
2: गुड़िया वाली नुमाइश? चलो आया, चलो ना।
1: हाँ, उठना नहीं, बुखार बढ़ जाएगा। ए लो, बस एक घूंट में गट से सारी दवा पी जाओ, फिर ले चलेंगे।
2: बड़ी चैंत, दवा तो हम नहीं पियेंगे।
1: फिर हम जबरदस्ती पिला देंगे? हाँ,
2: हम तो नहीं पियेंगे।
1: तब फिर ऐसे नहीं।
2: नहीं नहीं आया, हम तुमसे नहीं पियेंगे, मम्मी से पियेंगे।
1: मम्मी तो दफ्तर गई है। पी लो भैया, नहीं तो वे बहुत बिगड़ेंगी।
2: तुम्हें डांट पड़ेगी, तब तो खूब मजा आएगा। कल तो मम्मी ने दवा पिलाई थी, परसों भी। तुम कौन होती हो? आया भरती भरती, भाग जाओ यहाँ से।
1: सच्ची आफत करमारी है, इतनी देर में कितना काम हो जाता। शंटू मंटू की दूध की बोतल धोनी है, कपड़ों पर इस्त्री करनी है।
2: ये सब काम तो दीदी करेंगी।
1: दीदी के इम्तिहान है, उन्हें पढ़ना है ढेर सा।
2: अच्छा आया, हमें गिलास पकड़ा दो। तुम आंखें बंद करो, हम अपने आप पियेंगे। दे दो ना गिलास।
1: अच्छा,
2: आया।
1: अच्छा लो पकड़ो। ए संभाल के, पकड़ लिया। अच्छा लो, अब जल्दी से पी जाओ। एक दो।
2: नहीं नहीं, तुम पहले आंख तो बंद करो।
1: अच्छा लो, बंद कर लिया। एक दो तीन। ए फेंक दी सारी दवा। ओहो, सारी दवा बेकार गई। जो मन में आए करो, हमें क्या।
2: मम्मी, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे।
0: क्यों, आज क्या है?
2: आज तुम घर पर रहोगी ना।
0: तो इससे क्या, छुट्टी तो हमारी है ना।
2: बस मम्मी, हमारी भी छुट्टी है।
0: नहीं नहीं, छुट्टी उट्टी नहीं, जल्दी से जाओ। आया से कहो स्कूल के लिए तैयार कर दे।
2: मम्मी
0: बस जाओ जाओ जाओ, बस जाओ। नहीं, गलत बात है, एक दिन में कितनी पढ़ाई हो जाएगी, फिर पिछड़ नहीं जाओगे।
2: नहीं मम्मी, आज ना भेजो।
0: जाओ जाओ, राजा बेटे की तरह जल्दी से तैयार हो जाओ। आज शंटू मंटू के लिए झगड़े सिलने हैं, उनकी बिब बनानी है, बहुत काम है, तुम जल्दी से।
2: मम्मी बड़ा मजा आएगा, घर में दिन भर हम तुम खेलेंगे। आज तुम्हें हरा ना दिया तो?
0: भैया फिर वही जिद, फौरन जाओ। आया, ले जाओ इसे। ऑफिस से छुट्टी तो दिन भर उनके साथ सर खपाओ, जैसे और कोई काम ही नहीं।
2: आया। चलो हम भी भाग चलें।
1: क्यों भैया, क्या हुआ?
2: मन नहीं लगता।
1: अच्छा चलो, शंटू मंटू को खिलाएं थोड़ी देर।
2: नहीं आया, वो दोनों गंदे हैं, पेपे रोते रहते हैं, उनके मारे तो मम्मी हमें भी नहीं खिलती हैं।
1: तो फिर चलो उठो, लॉन पर गेंद खेलें हैं। अब तो कुछ हंसो तो।
3: ए आई हंसी ये आई।
2: नहीं, लॉन पर हमें नहीं अच्छा लगता।
1: तब कहाँ खेलोगे?
2: अनिल के घर चलो ना।
1: रोज रोज अनिल के घर?
2: तो क्या हुआ, उसकी माँ तो कभी नहीं डांटती, मम्मी तो बस जरा ऐसी बातें में चिल्लाने लगती हैं।
1: अच्छा ले चलेंगे, लेकिन एक शर्त पर, वहाँ ज्यादा उधम नहीं मचाओगे।
2: चलो ना।
1: रुको तो, ओफो धोती छोड़ो भैया, फट जाएगी।
2: तो खड़ी हो फौरन। वन टू।
1: अरे चप्पल तो पहन लेने दो राजा। अच्छा, भैया

0: अजीब लड़का है, बस बात मुंह से निकले और पूरी कर दो। बहू जी आ लेंगी तभी तो जा सकती हूँ। जरा ठहर जाओ राजा भैया, थोड़ी देर में चलेंगे। जब देखो अनिल के यहाँ बस हो गई घंटों की छुट्टी, एक अकेले भैया ही नहीं संभल पाते, ऊपर से बहू जी नाराज होती है कि तुम शंटू मंटू का काम ठीक से नहीं करती हो। हाँ नहीं तो न स्वेटर पहना न मोजे, मेरी ही डांट करवाएंगे। राजा भैया अंधेरा होने लगा, आओ अब घर चलें।
1: चलेंगे आया, थोड़ा सा और खेलने,
0: फिर कल खेलना।
1: देखो अनिल आया तो समझती हूँ, इतना घर बन गया, जरा सा बचा है पीछे लगी है।
0: शाम हो गई है, गीली मिट्टी से बहुत खेल करोगे तो सर्दी लग जाएगी।
1: तुम पीछे का दरवाजा बनाओ अनिल, ये तो मानती ही नहीं, ऐसे ही बाबा करेगी।
0: राजा भैया
1: ओफो आया, मानती क्यों नहीं। अच्छा इधर आओ, आओ ना
0: आओ। यहाँ तो गीला है
1: सिर्फ, जरा से तो पानी है, डरती हो। आओ ना इधर आओ, बैठो यहाँ। अच्छा बताओ तो हमने कौन सी चीज बनाई है?
0: मिट्टी का ढेर है ये तो।
1: हाँ आया तुम इतना भी नहीं समझती हो।
0: तो और क्या है?
1: आया ये मकान है, घर है, समझी?
0: काम फट जाएगा ऐसे चिल्लाओगे तो, जो हम बोलेंगे ही नहीं।
1: मत बोलो, बड़ी आई आया कहीं की, जो हम भी नहीं बोलते तुमसे।
0: बस गुस्सा हो गए। अच्छा बताओ
1: ये है आया, इधर देखो ना, ये है इसकी खिड़की और ये है इसका दरवाजा।
0: और हाय खिड़की दरवाजे में ताला कैसे बंद करोगे, सब तो खुला है।
1: इसमें आया तो ताला छोड़े ही पड़ेगा।
0: तो क्या सब खुला रखोगे?
1: हाँ तभी तो मजा आएगा, खूब अच्छा लगेगा, फिर तो कोई हमें नहीं रोकेगा।
0: इतने से मकान में रहेगा कौन कौन?
1: इसमें आया बस तीन जने रहेंगे, मम्मी पापा हम
0: और शंटू मंटू दीदी।
1: कोई भी नहीं, फिर तो भीड़ हो जाएगी।
0: अच्छा तो हमें भी नहीं रखोगे?
1: तुम्हें तो आया फौरन निकाल देंगे, तुम थोड़े ही रहोगी। और फिर तुम तो इतनी मोटी हो, आओगी कैसे इसमें?
0: झुक कर घुस जाएंगे।
1: झुक घुस जाओगी, लेकिन फिर निकलोगी कैसे? फंस जाओगी ना भैया ना, तुम तो सारा मकान ही तोड़ दोगी।
0: हमें निकाल दोगे तो हम खाएंगे क्या?
1: हम नहीं जानते आया, तुम्हारे मारे तो मम्मी हमें अपने साथ कभी खिलाती भी नहीं। तुम नहीं रहोगी तो कितना अच्छा रहेगा, हम मम्मी की गोदी में बैठकर ठाट से खाएंगे।
0: तो फिर हम रोएंगे।
1: अच्छा रुको रुको, हम मम्मी से कह देंगे तुम घर पर रहना, शंटू मंटू खिलाना, बस अब चुप हो जाओ। अरे भाई कह तो रहे हैं कि तुम्हें रख लेंगे शंटू मंटू के लिए।
0: हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे।
1: नहीं भाई मान जाना, तुम तो सब गड़बड़ कर दोगी।
0: नहीं भैया, हम तुम्हारे आंगन में स्वर्ग बनाएंगे।
1: क्या स्वर्ग? आया स्वर्ग तो अनिल की माँ कहती है मरने के बाद जाते हैं, तुम हमें मार डालोगी?
0: नहीं राजा भैया, हम जो स्वर्ग बनाएंगे ना उसमें जानते हो क्या होगा?
1: हम कुछ भी नहीं जानते, तुम ये तो बताओ कि वहाँ खिलौने होंगे कि नहीं?
0: हाँ हाँ होंगे।
1: अरे आया मम्मी से तो पूछ ले। आया स्वर्ग में मम्मी भी रहेंगी ना?
0: हाँ हाँ।
1: आया स्वर्ग में तो मम्मी हमें प्यार करेंगी ना?
0: राजा भैया को तो मम्मी अभी भी कितना प्यार करती है।
1: करती थी आया, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। आया मम्मी पहले बिल्कुल नहीं डांटती थी, जब से शंटू मंटू आ गए ना हमारी सुनती ही नहीं, इनके मारे तो।
0: देखो भैया स्वर्ग तो खुशी के लिए होगा, उसमें जो लड़ाई करेगा उसे निकाल दिया जाएगा।
1: तब तो हम भी नहीं लड़ेंगे आया।
0: कोई भी राजा बेटा लड़ाई थोड़ी करता है।
1: मगर आया एक बात तो बताओ, हम ढेर सी मिट्टी जमा कर ले और जो आंगन है ना
0: घर में।
1: अरे हाँ अपना आंगन
0: है तो
1: बस वही स्वर्ग बनाएंगे।
0: आंगन में स्वर्ग?
1: हाँ हाँ बड़ा मजा आएगा आया, चलो हम तुम्हें निकालेंगे नहीं, लेकिन जब मम्मी हमें गोदी में लेंगी तो तुम अभी से मत आना।
2: अरे तुम अभी सोए नहीं भैया? अरे हमसे बोलोगे नहीं, क्या हुआ? अरे अरे, अरे इतना गुस्सा, अरे मुंह भी छुपा लिया। आया कहाँ है?
1: आया को हमने भगा दिया, वो गंदी है, हम उससे नहीं बोलेंगे।
2: नहीं नहीं रोते नहीं बेटे, क्या बात है, क्या बात है बेटे, आज तुम इतनी देर तक सोए क्यों नहीं?
1: मम्मी बताएं।
2: हाँ हाँ
1: यहाँ बैठो मम्मी, और पास
2: हाँ,
1: मेरे पास आओ ना।
2: हाँ, ले लो तुम्हारे पास।
1: अब बताएं
2: हाँ।
1: मम्मी हमें नींद नहीं आती है, तुम कहानी सुनाओ ना।
2: अब तो बहुत रात हो गई है, जल्दी से सो जाओ, कल बढ़िया सी कहानी सुनाऊंगी।
1: नहीं आज ही, अभी सुना, कल तो आया गंदी गंदी सुना कर जबरदस्ती सुला देगी, बड़ी खराब है, मम्मी वाली सुना दो ना।
2: कौन सी बेटा?
1: वही परी वाली जो तुमने एक बार सुनाई थी जब हम गिर गए थे, जब मम्मी तुम हमें गोद में लेकर खाना खिलाती थी, जब मम्मी आया नहीं थी, वही वाली।
2: वो तो बहुत लंबी है, इस वक्त तो याद भी नहीं।
1: याद है, याद है, सुनाओगे नहीं तो फिर हम भी नहीं सोएंगे। सुना दो मम्मी।
2: अच्छा जल्दी से लेटो, तो आंखें मूंदो।
1: ये लो।
2: एक थी सोन परी। एक दिन वो बहुत सी परियों के साथ पहुंची राजा के महल में। महल के आंगन में
1: स्वर्ग था।
2: अरे तुम्हें तो इतना याद है।
1: मम्मी आज हमने आया के साथ पक्का कर लिया है कि हम भी आंगन में स्वर्ग बनाएंगे। अरे मम्मी तुम तो रो रही हो। अच्छा अच्छा नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। मम्मी रो नहीं, हम नहीं बनाएंगे स्वर्ग। बस अब तो चुप हो जाओ मम्मी।
2: नहीं नहीं बेटी, मैं रो थोड़े रही थी, वो तो आंख पे कुछ चला गया था। हम जरूर आंगन में स्वर्ग बनाएंगे। हाँ तो सोन परी जब महल में पहुंची तो वहां पर सबसे आगे एक बढ़िया सा भैया भैया बस सो गया। इतनी सी कहानी सुनाने की उसके लिए।

आंगन में स्वर्ग। अभी आप सुन रहे थे ये नाटिका, लेखन और निर्देशन किया दुर्गा मेहरोत्रा ने। ये थी आकाशवाणी इलाहाबाद की भेंट। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार

सुनिए थैंक गॉड फिल्म में योहानी, जुबिन नौटियाल और सूर्या रघुनाथन को, बोली के रश्मि विराग ने संगीत तनिष्क बग्गी का।

संजीव सुनिए, शंकर विशाल लॉय के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा गीत, आवाजें अनुषा माली और विशाल ददलानी के, फिल्म का नाम है डॉन 2।

0: सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: सुरती सिजलर, जहां तमे मानशो डिलिशियस वातों ने साथे मेलोडियस गीतों।

चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल को फिल्म खाकी में, बोल समीर के संगीत राम संपत का।

प्यार से। अभी आपने उदित नारायण और श्रेया घोषाल को हाँ की फिल्म में सुना। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश काबिल फिल्म से है। तर्ज बनाई है राजेश रोशन ने, वो लिखे हैं नासिर फराज ने, आवाजें हैं जुबिन नौटियाल, पलक मुच्छल और नासिर की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है, ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का

0: विकल्प चुने, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
2: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
3: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत एक अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सांभळी रह्या छो आकाशवाणी विविध भारतीनो सूरत केन्द्र 101.1 FM। हवे सांभळशो आकाशवाणी अमदावादथी प्रसारित सांजना प्रादेशिक समाचारनुं ध्वनिमुद्रण।

लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू को फिल्म गुलाम में। गीतकार समीर, संगीतकार जतन ललित।

देश परदेश, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। संगीत राजेश रोशन का, बोल अमित खन्ना के।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। लीजिए सुनिए खयाम के संगीत निर्देशन में साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म का नाम त्रिशूल।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: और यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश किशोर कुमार की आवाज में महान फिल्म से अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।
1: छाया गीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सादर समर्पित है अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर को। सदाशिव अमरापुरकर मुंबई सिने जगत का एक बहुचर्चित अदाकार,

0: सदाशिव अमरापुरकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में 11 मई सन 1950 में हुआ था। उनका असली नाम था गणेश कुमार नरवाड़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार से थे अमरापुरकर। बचपन ही से होशियार और सबके दुलारे थे वे। उन्हें घर में और दोस्तों में तात्या नाम से जाना जाता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अहमदनगर में ही हुई। स्कूली जीवन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। कई नाटकों में वो अदाकारी के जलवे दिखाया करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें पुणे विश्वविद्यालय में दाखिल होना पड़ा। यहीं पर वो इतिहास विषय में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करते हुए एक्टिंग की ओर भी मुड़े। सदाशिव अमरापुरकर जब विविध भारती के स्टूडियो आए थे, उन्होंने अपने इस एक्टिंग के सिलसिले का जिक्र करते हुए बताया था। सुनते हैं उन्हीं से।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है, आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही मतलब विद्यार्थी

तोरणमल थे, जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा, और उसमें मैंने एक नाटक किया काई स्वप्न विकाई चेत, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को।

सन 1973 में उन्होंने अपनी स्कूली जीवन की सहेली सुनंदा करमरकर से विवाह किया और साथ ही साथ अदाकारी में भी हाथ आजमाते रहे। मुख्यतः वो मराठी नाटकों में काम करते थे। सन 1981-82 में यूं ही सदाशिव अमरापुरकर मराठी नाटक हैंड्सअप में काम कर रहे थे। उस जमाने के जाने माने मराठी अदाकार अविनाश मसूरेकर और भक्ति बर्वे, जो बाद में भक्ति बर्वे इनामदार बनी, इनके साथ वो काम करते थे। तो इस ड्रामे में जो वो कर रहे थे हैंड्सअप में, इस नाटक को देखा जाने माने निर्देशक गोविंद देलानी ने भी। सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग से निर्देशक गोविंद देलानी बड़े ही प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म अर्धसत्य में अदाकारी करने का मौका दिया। फिल्म अर्धसत्य काफी लोकप्रिय हुई और उनका रामा शेट्टी का किरदार भी बड़ा ही कामयाब रहा। हिंदी सिने जगत को सदाशिव अमरापुरकर के रूप में मिला एक खलनायक, ऐसा खलनायक जो अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी से देखने वालों का

0: दिल जीत लेता था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: तेंदुलकर जी के चार पांच नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी। और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई। वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी। तेंदुलकर जी को पूछा, मैंने कहा ये क्या रोल है, बोले छोटा है अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, दो ढाई सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था, और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में एबीसीडी भी मालूम नहीं था।

इस तरह से उन्हें हिंदी सिने जगत का एक विशाल स्क्रीन अदाकारी दिखाने के लिए मिला। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने और भी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया। हिंदी मराठी के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, हम उन फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें सदाशिव अमरापुरकर ने काम किया था।

0: नाम मेरा जिया। सन 1993 में पहली बार फिल्म फेयर ने खलनायक को दिया जाने वाला अवार्ड शुरू किया, जिसे पाने का गौरव मिला सदाशिव अमरापुरकर को। अर्धसत्य की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, फरिश्ते वगैरह वगैरह। दोस्तों, फिल्म हुकूमत में उन्होंने लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ विलेन का किरदार किया और वो किरदार इतना सफल हुआ कि ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस तरह सदाशिव अमरापुरकर धर्मेंद्र के लिए सफलता का जैसे एक पैमाना बन गए। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। सन 1991 में एक फिल्म आई थी सड़क। इस फिल्म में उन्होंने एक हट के चैलेंजिंग रोल किया था जो आपको भी जरूर याद होगा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।
1: कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देख देख।

0: पे तो बाल खड़े हो गए, हाथ पे जान निकल गई मेरी। ओ क्या रंग है, हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देखना ना रूप ना रंग, देखिए किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। हाँ, कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी।
1: ये सब क्या है चाचा? चलो यहाँ से।
0: मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है। किस्मत जिसे कहते हैं ना हम, वो है ये सब। तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था, तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू, गिरवी। फिर जोर से हाँ बोलना, शर्माती क्यों है? लेकिन इतने साल हो गए, इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई, इस कोठे पर। आज ये बेचारा अपनी बेटी को छुड़ाने आया है, क्या करेगा, पैसे तो है नहीं इसके पास चुकाने के लिए, इसलिए इसने तुझे लाया है। आज से तू यहाँ रहेगी, इस कोठे पर, इसकी बेटी की जगह।
1: नहीं चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं आपकी भतीजी हूँ।
0: रिश्तेदारी का तो खेला ही है सब।
2: मुंबई में एक्टिंग के लिए वे किस तरह पहुँचे, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था, आइए सुनते हैं।
3: नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था, और वहाँ एक परीक्षक थे, उनका नाम था भिक्कू पै आंगले। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है, वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया, तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, उन्होंने कहा कि आप आइए, और मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिक्कू पै आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले लें। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए, और उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं, मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दूरवांची जोड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए, जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आई। मैं तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे, और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया।
4: अरे ये क्या हो गया ये साले, उन बदमाशों को यही एक दुकान मिली लूटने के लिए।
5: ओ, सर आप इस दुकान में पार्टनर है क्या?
4: अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है।
5: अच्छा अच्छा,
4: आ गया हसमुख, आ गया हसमुख। ए हसमुख, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं।
6: तू अपनी आधी पगार मुझे देगा?
4: पागल हो गया।
6: अरे पागल नहीं बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया।
4: कैसे?
6: मैंने है ना दो दिन पहले दुकान बेच दिया था।
4: क्या?
6: हाँ।
4: किसको?
6: ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था।
4: हाँ।
6: उदित करके सारे जरूरत के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको।
4: कॉन्ग्रेचुलेशन। ए आंडो पांडो।
5: यस सर।
4: ये ले, ये 10 रुपए।

0: मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज।
1: अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया और तू मिठाई क्या मंगवा रहा है? अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे मुझे झूठी तसल्ली दे भाई।
0: माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा। जीना तो छोड़ो, पीने नहीं देगा।
2: सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके द्वारा अभिनीत कुछ ये फिल्में भी हैं, जैसे आंखें।

0: किए जाए।
1: कूली नंबर वन, गुप्त, जंग, तड़ीपार, हम साथ साथ हैं वगैरह वगैरह। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी रिलीज फिल्म थी सन 2013 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज। आज के इस कार्यक्रम में प्रयोग की गई रिकॉर्डिंग हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुई है। आगे

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
4: इस प्रोग्राम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आकाशवाणी जनसेवाना 90 वर्ष।

नजरों से जो कह दिया है सब कुछ, तो अब पर्दा किस बात का है। अनजान थे कल, आज दिल के इतने करीब हो, तो फिर पर्दा किस बात का है। कोई

की बातें हैं, ये कोई पानी पे लिखी इबारत नहीं है। संभाले हैं दर्द एक दूजे के, ये कोई तिजारत नहीं है।

0: वज्रदंती, वीको वज्रदंती, भारत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।

कुछ इस तरह से जुड़े हैं दिल से दिल के तार, बस मुस्कुरा भर देते हो और ढह जाता है शिकवों का अंबार।

उठी हैं रात रानी की खुशबू तेरी सांसों में, इस मदहोशी का क्या करें। एक होने को बेताब है तन और ये मन, दिलों की गर्मजोशी का क्या करें।

0: छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया जयंत के साथ, अब इजाजत दीजिए।
1: देखो टर्मरिक